हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवी तिथि, तदनुसार दिनांक 30 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे

0: पर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आप इस समय हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। श्रोताओं, भोर की इस शांत शीतल बेला में समय है ईश्वर की आराधना का, उनके स्मरण का, आज दिन भर के लिए उनका आशीष पाने का। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

राम नाम भजो भाई। यहाँ ये नाम जपन हम आप तक पहुँचा रहे थे, स्वर था पंडित भीमसेन जोशी का। नाम जपन मस्तिष्क को ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करने में सबसे श्रेष्ठ सहायक होता है। ब्रह्मांड भी सकारात्मक मन की पुकार जल्दी सुनता है। भक्ति धर्म तो है ही, भक्ति विज्ञान भी है।

राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, स्वर अनूप जलोटा का था। श्रोता, मन के रिकॉर्ड की सुई को अगर कुछ समय तक एक बिंदु पर अटकाया जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। अगर ये सुई नाम जप की हो और वो बिंदु ईश्वर का आशीष पाना हो तो ये अटकाव अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है।

राम नाम के आगे न कोई बड़ा न कोई छोटा। इस भक्ति रचना में स्वर था अनुराधा पौडवाल का। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। आइए आपको सुनवाएं हनुमान चालीसा।

ईश्वर का स्नेहाशीष सदा आप सभी पर बरसता रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर पर। आइए आपको सुनवाएं आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका युवा भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 10:00।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम होंगे हमारे तीनों सभाओं में। सबसे पहले सुबह 7 बजे आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमों का। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम शीर्षक गीत। दोपहर ठीक 12 बजे भी आनंद ले सकते हैं आप फिल्म संगीत का, और दिन में 1:45 पर भी, और रात्रि 8 बजे और उसके पहले संध्या 6:05 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम हमारे आज के दिन भर में शामिल होंगे सुबह 7:45 पर, सुबह 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत के विशुद्ध स्वर बिखरेंगे हमारे प्रसारणों में सुबह 11 बजे और रात्रि 10 बजे के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे चुके हैं।

और अब बात उस कार्यक्रम की जिसका इंतजार आप सभी को रहता है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं सुबह 8:30 पर। नाम होता है नमस्कार उदयपुर। आज कल्चरल पॉप सैटरडे मनाएंगे हम। वीकेंड ओपनर यानी वीकेंड की शुरुआत में हम बात करेंगे रोज़मर्रा के जीवन में गर्मी से हम कैसे देसी उपायों से बच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है आज, इसके बारे में भी बात होगी। आसपास की खबरें आपसे साझा करेंगे। लोक परंपराओं में मेवाड़ में आतिथ्य सत्कार की परंपरा, इस विषय पर बात की हम आपसे करेंगे। और साथ ही सोशल मीडिया के मज़ेदार ट्रेंड्स के बारे में हम आपसे कुछ विचार साझा करेंगे। स्मार्टफोन उपयोग में विभिन्न परमिशन की स्वीकृति और प्राइवेसी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज के नमस्कार उदयपुर का। सहेलियाँ रिबाड़ी, ये कार्यक्रम होता है ग्रामीण बहनों के लिए दिन में 1:05 पर। विचार वाली बात का विषय रहेगा मासिक उपलब्धियाँ। सभ्यता संस्कृति में डिजिटल रिकॉर्ड की बात होगी और राजस्थानी गीतों का आनंद लीजिएगा इस कार्यक्रम में। जानकारी दी जाएगी गृह उद्योग विस्तार कैसे करें, इस विषय पर। गाँव में आजकल में बात होगी महिला समूह बैठक की और पर्यटन स्थलों की भी चर्चा होगी। खेती में आज में सुबह 7:50 पर सुनिएगा मई माह के विशेष खेती कार्यों के बारे में। कृषि जगत में किसान की बात का विषय रहेगा। किसानों के लिए उपलब्ध बीमा विकल्प, राजस्थानी गीत होंगे और आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी आपसे हम साझा करेंगे। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी संध्या 5:00। आज सूरत और जूनागढ़ के साथ गांधीनगर की सैर कीजिएगा। आज का युवा, इसमें हेमेन बैकले, अर्श सिंह दिलबागी के बारे में बात होगी। मेगा प्रोजेक्ट्स में वधावन पोर्ट और विल्बर राइट और स्टीवन गैरेट के साथ ही परेश रावल और ऋतुपर्ण घोष की बात होगी। आज का इतिहास साझा करेंगे और रोजगार समाचार और खेल समाचार होंगे। संध्या 7:00 खेती और घर कार्यक्रम सुनिएगा। ये ग्रामीण परिवारों के लिए

विशेष कार्यक्रम रोजाना हम लेकर आते हैं चौपाल की बातों में गर्भस्थ पशु देखभाल और राजस्थानी गीत तो होंगे ही, एग्रोमेट एडवाइजरी होती है और साथ ही बहुत सारी अन्य योजनाओं की जानकारी हम आपको देंगे। तो ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

श्री रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। आज हमने आपको सुनवाई इसकी 94वीं कड़ी, स्वर अनुराधा पौडवाल का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह

आज हमने आपको सुनवाई इसकी 94वीं कड़ी, स्वर अनुराधा पौडवाल का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। हमारे किसान भाई अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने नानू भाई रो राम राम सा। देखो सारणी कार्यक्रम में देखो आप जानकारी करा कि किसान भाई बहन जो है देखो बागवानी फसलां पुष्प एवं सगंधीय पौधा जो है एनी टाइम देखो पौध अवस्था में है तो अनारो उचित प्रबंधन कणी प्रकार कर सके है। जटे बागवानी फसलारी बात करा तो नया बाग लगा रहे किसान भाई खट्टा खोद दीदा वेगो और धूप और कीट देखो वना रोग रो नियंत्रण वेग्यो वेगा। अणी टाइम पे अणा गड्ढा में आधा ऊपर वाली मिट्टी और आधी कंपोस्ट में क्लोरोपायरीफास दवा मिलाई ने पूरी तरह देखो अपने ऊपर तक भर देनो है। गर्मी के कारण उचित जल प्रबंधन देखो आवश्यक है। अंडे बाते देखो बागवानी फसला में 10-12 दिन रे अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहनो है और जरूरत रे हिसाबों कटाई छटाई भी करनी चाहे। अणी टाइम पे किसान भाई आम अमरूद पपीता लीची अंगूर आंवला बेर नाशपाती आलू बुखारा और नींबू में देखो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करता रहे। जटे देखो बात करा आम री तो आम में फुदका रोग कीट नियंत्रण रहवाते फला में देखो मटर रे आकारी अवस्था पर मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर पानी में मिलाई देखो छिड़काव करना है। दासी मक्खी रे नियंत्रण रहवाते कार्बारिल 0.2% लारे 0.1% शर्करा और 0.1% मेलाथियन मिलाईने ट्रेप बनाई लटकाणो है। जटे खर्रा या पाउडरी रोग रे वाते देखो 0.2% घुलनशील गंधक रो प्रयोग करनो है। कोयलिया फल रे विकार वाते बोरेक्स 1% रो छिड़काव फल लागवा पे सिंचाई रे लारे करनो है। आम्रे फला ने उत्तक क्षय रोग रे बचाव रे वाते 8 ग्राम बोरेक्स रो 1 लीटर पानी में गोल बनाई छिड़काव करनो है और फला रे गिरवा ने रोकवा रे वाते और वृद्धि हार्मोन NAA 20 ppm रो छिड़काव करनो है। जटे अंगूर की बात करा तो अंडे बाग में गर्मी रे मौसम में 1 सप्ताह रे अंतराल पर सिंचाई करनी है। एंथ्रेक्नोज और स्कोलस्पोरा पत्ती धब्बा रोग री रोकथाम रेवाते फाइटालोन या पचे ब्लाइटॉक्स रो 0.3% रो छिड़काव यानी 750 ग्राम 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ मई में देखो अपने छिड़काव करनो है और 15 दिन रे अंतराल पर सितंबर तक छिड़काव करते रहनो है। जटे केला री बात करा तो रोपित केला रेवाते 1.5 मीटर री दूरी पर 50x50 cm का गड्ढा बनाई लीधा। प्रत्येक गड्ढा में 10 किलोग्राम सड़ी गोबर या पचे कंपोस्ट खाद 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान 50 ग्राम फास्फोरस और खेत रे ऊपर ही मिट्टी मिलाई ने देखो गड्ढा ने भरनो है। रोपित केला में 25 ग्राम नाइट्रोजन पौधा 50 सेंटीमीटर गोलाई में काटने मिट्टी में मिलाई ने सिंचाई करनी है। कागजी नींबू में फल फटवारी समस्या रे निराकरण रवाते पोटेशियम सल्फेट रो जो 4% रो गोल पानी में मिलाई ने छिड़काव कर सके। अमरूद री सघन बागवानी भी देखो किसान भाई रवाते लाभदायक वे अणमें अमरूद री 1x2 मीटर री दूरी पर लगानो है और अणी बात रो हमेशा ध्यान रखनो है कि बाग में पौधा लगाओ री दूरी जलवायु मिट्टी री उर्वरता और प्रजाति विशेष पर भी निर्भर करे। अमरूद री नई बड़वार जन पर फूल लाग रहा है तो शाखा रो 3/4 भाग काटने निकल देनो है ताकि अपने फसल में वृद्धि वह सके। अमरूद में 10-15 दिन रे अंतराल पर सिंचाई करते रहनो है। पुष्पण अवस्था पर 10% यूरिया रो छिड़काव 10-15 दिन रे अंतराल पर करवाऊं जो है देखो फसल में अधिक फसल मिले है। अमरूद री फसल में देखो मार्च मई महीना तक फूल आवे और फसल अगस्त लेने मध्य अक्टूबर तक मिलती रहे। अमरूद में बाहर नियंत्रण रहवाते 10% यूरिया रे गोल रो छिड़काव अणी महीना में देखो अपने फूला पर करनो है और छटाई करता रहनो है ताकि नई शाखा जो है वे फसल में अधिक फल देवा वाते लाभदायक वे। तेज धूप देखो जुलसवार रोक रहवाते पेड़ा रे बड़ा अंगा और तना पर कोपर और चूना रो लेप आपा लगाई सका हाँ। जटे औषधीय फसलारी अगर आपा वाता करा तो मैथारी फसल में 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन री तीसरी और अंतिम टॉप ड्रेसिंग अवश्य करनी है। मेंथा

सलरी कटाई 100 120 दिन पर जब पौधा में कलिया बनवा लागे तब करनी है, और दूसरी कटाई पहली कटाई रे 70 80 दिन पर करनी है। पौधा री कटाई मिट्टी रे सतह 4 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करनी चाहे। कटाई रे बाद पौधा ने 2 3 घंटा तक खुली धूप में छोड़ देना है, और कटाई रे बाद कटी फसल ने छाया में हल्को सुखाई ने आसवन विधि द्वारा आपा तेल निकाल सका। जटा सर्पगंधा री बात करा तो अंडी नर्सरी देखो अणी महीना में डाल दीदी वेगा। प्रति हेक्टर खेतरी रोपाई रे बाद 6 7 किलोग्राम बीज री आवश्यकता वे। जटे तुलसी री अगर आपा बात करा तो अंडी वावणी देखो अणी महीना में कर सका, जो एक फायदेमंद औषधीय फसल है। मई में रोपाई दोपहर रे बाद करनी है, और रोपाई रे बाद तुरंत खेत में सिंचाई कर देनी है। हल्की वर्षा वाला में तुलसी जो है वंडी रोपाई बहुत उपयुक्त है, और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल रे बात है 750 ग्राम या बचे 1 किलोग्राम तुलसी रा बीज पर्याप्त हुए। अंडी रोपाई पंक्तियों पंक्ति एक पौधा दूसरी पौधा री दूरी जो है 60 x 30 सेंटीमीटर री दूरी पर करनी चाहे। जटे सगंधीय पौधा री अगर आप बात करा तो रजनीगंधा में 1 सप्ताह रे अंतराल पर देखो सिंचाई, और 2 सप्ताह रे अंतराल पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहे, जणू खेत में खरपतवार नहीं बढ़ेगा जो कि फसल रे बात है हानिकारक वे। अगर रजनीगंधा ने देरू लगावा तो आपने देखो व्यवसाय में योग्य पुष्प डंडिया तो मिल जावे, परंतु नवजात कंद जो है वे कम बने। अंडे बातें देखो आपने टेम पे देखो आने वाली बावणी कर देनी चाहे, और कंद ने पंक्तियों में लगाना ठीक रहेगा। पंक्तियों पंक्ति री दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर, और पंक्तियों में कंद कंद री दूरी 15 20 सेंटीमीटर रखनी चाहे। 1 एकड़ रजनीगंधा लगावर बात है लगभग 50 से 60 हजार कंदरी आवश्यकता वे। अच्छी पुष्प डंडिया प्राप्त करवा रहे बात है 3 से 5 सेंटीमीटर व्यास वाला कंद लगाना हौरे, और कंद लगाती वेरा खेत में नमी रो वर्णो रेणो आवश्यक है। कंदू कल्ला अंकुरित वही ने दिखाई देवा लागे तो सिंचाई कर देनी चाहे, और समय समय पर वातावरण के अनुसार सिंचाई करता रहो अच्छी पैदावार वे। जटे गुलाबरी फसल रे अगर आप बात करा तो गुलाबरी फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहना है। चाइना एस्टर गेंदे कार्नेशन में देखो शीर्ष नोचन और लिलियम में फुलारी तुड़ाई शुरू कर देनी है। पुष्प वाला पौधा में कीट या रोग रा प्रकोप दिखाई दे तो 0.2% फफूंदी नाशक कैप्टान या पचे बावेस्टिन, और 0.2% कीटनाशक दवा रोगोर मेटासेस्टोटॉक्स आदि रो गोल वणाई ने 20 से 25 दिन रे अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहे। ग्लेडियोलस री खेती में सिंचाई लगभग 10 से 12 दिन रे अंतराल पर करनी चाहे। ध्यान रखना चाहे कि यदि कंद जमीनू निकल रहे तब वणा में 2 3 सप्ताह तक पानी रोक नाखण चाहे, अणी तरह का पौधा रो विकास जो वेगा वो अच्छे वेगा। जटे डेफोडिल और नरगिस रे कंद में कल्ला अंकुरित वैरा वे तो सिंचाई कर देनी चाहे। अच्छी उपज लेवा रे वाते खेत में देखो नमी बनाई रखनी है। रोग या कीट रो प्रकोप वे तो 0.2% बावेस्टिन और 0.2% रोगोर या पचे मेसासेस्टॉक्स आदि रो गोल वणाई ने 20 से 25 दिन रे अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहे। तो किसान भाई एनी टाइम पे देखो बागवानी फसला और पुष्प और सगंधीय जो पौधा है वन में आना वाता रो ध्यान देगा तो वना ने हौ लाभ वेगा। और देखो घड़ी रियाड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टाइम भरो, तो आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।

हमारे किसान भाई बहन अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही लम्हों में हम सजाएंगे फिल्मी गीतों की सुर भरी महफिल, जहां होंगे कुछ सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर का ये स्वर था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया और हमने इसे लिया फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आज सुबह सुबह हवाओं में थोड़ी नमी थी, शायद गर्मी अब आराम करने कहीं थमी थी।

मीठी सी चुभन और ठंडी सी अगन। ये स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म थी रेशमा और शीरा। इस गीत को संगीतबद्ध किया जयदेव ने और ये गीत उद्धव कुमार की कलम से

अच्छा हुआ। पनघट और पनिहारी ने ये मेवाड़ और राजस्थान की धरती का एक पुराना संबंध है, भोर और ये कलसियों के खनकार।

किसी फिल्में बनती हैं तो वो कालजयी हो जाती है। ये फिल्म थी दो बूंद पानी। इस गीत को कैफी आजमी ने लिखा और जयदेव का संगीत था। एक बार फिर से ये आवाज़ें थीं मीनू पुरुषोत्तम और परवीन सुल्ताना की। श्रोताओं, सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। बड़ी तेज गर्मी के बाद किसी दिन कोई सुबह हल्की ठंडक लेकर आती है तो दिल भी थोड़ा मचल जाता है।

मन बहलाता ये गीत था फिल्म कश्मीर की कली से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा और संगीत से संवारा OP नैयर ने। सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। अगला गीत रफ़ी की ही आवाज़ में है। कभी कभी खत मन के कागज़ पर भी लिखे जाते हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते। रात आती है तो सितारों से टिमटिमाते हैं और सवेरा होता है तो फूलों से खिल जाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को हमने लिया था फिल्म कन्यादान से। शंकर जयकिशन का संगीत और श्याम राज का लिखा हुआ ये नगमा।

बड़े खूबसूरत होते हैं वो लम्हे जब मन को सुकून देने वाली हवाएं हो, फिजाएं हो और आराम भी हो। वैसे आज शनिवार है तो बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है और बहुत सारे लोग थोड़े से छुट्टी के मूड में होते हैं। ये सदाबहार नगमे आप आकाशवाणी उदयपुर से सुन रहे हैं। ये गाना था फिल्म अभिलाषा से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर, आर डी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का गीत। एक छोटा सा ब्रेक और कुछ और नगमे ब्रेक के उस पार।

0: 90.
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को
3: बीप तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
3: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
4: अब क्या करोगे
3: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: खो गया इंतजाम
7: किसका
6: गुड्डी की फीस का
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार एडवांस में भेजिए
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
9: हंसो मत बोलो

अभिनेत्री, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। इस गीत को लिखा मजरू ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और श्रोताओं, अब हम बढ़ चुके हैं सदाबहार नगमों के आखिरी गीत की तरफ। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। ये फिल्म है अंदाज़।

वादे सभा भी चलेगी और बिजलियां भी कड़केंगी, बरखा भी आएगी, बस थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:45 हो रहे हैं। ये समय है सुगम संगीत का।

ये दो गज़लें अभी आपने सुनी, एक में स्वर था आशा भोसले का और दूसरी में पंकज उदास का। इन्हीं के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं ख़त्म होता है।

0: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले हिंदी में होंगे, जिसे हम बुलाते हैं समाचार प्रभात, और सुबह 8:15 पर सुनेगा अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मात्र

0: एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।

0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket,

श्रोताओं, हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुबह की सूचनाओं, मनोरंजन, जानकारियां और दिलचस्प किस्सों भरा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर।

0: सुबह का आना इस बात को बताता है कि हर अंधेरे को एक दिन रोशनी में बदल जाना है। अंधेरे गमों के हो तो खुशियां बिखर जाएंगी, और जीवन में कुछ कमी हो तो यकीनन पूरी हो जाएगी। बस आप उम्मीद का दामन थामे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलिए।
1: उम्मीदों को मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीदें आपको मंजिल तक ले जाती है। और आज अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका दोस्त भगवती लक्षकर,
0: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना। स्वीकार कीजिए हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
1: और अब जो है आपको ब्रीफ दे देते हैं कि आज क्या क्या आपके लिए नमस्कार उदयपुर में होने वाला है। तो आपके लिए होने वाला है रोजमर्रा के जीवन में गर्मियों से जुड़े देसी उपायों पर बातचीत, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस आज हम मना रहे हैं, और आगे क्या है
0: बिल्कुल आसपास की खबरें हम आपसे साझा करेंगे। IPL में कल जो उलटफेर हो गया उसके बारे में भी आपको बता देंगे, और आज शनिवार है तो आज हम बात करते हैं फोक्स एंड रूट्स की, यानी लोक परंपरा। तो मेवाड़ में आतिथ्य सत्कार की जो परंपरा है उससे जुड़ी बातें होंगी, और साथ ही एंटरटेनमेंट लाउंज भी है आज, यानी सोशल मीडिया के मज़ेदार ट्रेंड्स हम आपको बताएंगे।
1: साथ ही साथ जानकारी हम देंगे आपको स्मार्टफोन उपयोग में विभिन्न परमिशन की स्वीकृति और प्राइवेसी पर।
0: तो बहुत दिलचस्प सैटरडे रहने वाला है आज का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ये है नमस्कार उदयपुर।

0: हालांकि उस मौसम को आने में थोड़ा सा वक्त है भगवती, लेकिन फिर भी आज सुबह से जो मौसम है वो तो मुझे बड़ा औसम लग रहा है।
1: बिल्कुल, सुबह से आंधी और बारिश दोनों ही शुरू हुए हैं, और लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहने का है।
0: बिल्कुल, वैसे तो हम चाह रहे थे कि नौतपा जो था वो पूरे 9 दिन रहता और उससे जो होने वाले बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वो रहते मिलते। फिर भी मौसम है और अपने हिसाब से प्रकृति चलती है। हम कुछ बात कर रहे थे कि रोज़मर्रा के जीवन में गर्मियों से बचने के कोई देसी उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो देखो कि खाने पीने की बात आ जाती है सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे, खाली पेट नहीं निकलें, है ना। और सुबह सुबह आप उठें तो मिट्टी के घड़े वाला पानी पीजिए। आजकल वो परंपरा कम हो गई है, फ्रिज खोला, पानी की बॉटल निकाली और घटाघट पी लिया, लेकिन उससे बेहतर, कई बेहतर होता है मिट्टी के घड़े वाला पानी। दिन में 2-3 बार आप नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इन दिनों जगह जगह वो बेल फल दिख रहे हैं, उनका भी शरबत बनता है। आम पन्ना ले सकते हैं, सत्तू। अब जैसा कि हम सोशल मीडिया से बहुत दूर दूर की रेसिपीज़ भी हम तक आने लगी है, तो ये बिहारी सत्तू भी इन दिनों हमारे आसपास भी दिख रहा है। इसके अलावा भी जो फल आते हैं पानी वाले, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, नारियल पानी, इनका सेवन आपको ज़्यादा करना है। और तला भुना, जो तुम्हें और मुझे बहुत पसंद है, उसे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कच्चा आम और पुदीना आप ले सकते हैं, और ये जो पानी में डाल के या पानी इस पुदीने का बनाकर अगर आप पियेंगे तो आपको निश्चित ही लू में जो है शिकायत नहीं मिलेगी, लू वाली शिकायत। और कच्चा प्याज भी आप ले सकते हैं, दोपहर के भोजन में कच्चे प्याज का सलाद जरूर खाएं, ये भी लू के खतरे से आपको बचाता है। साथ ही साथ छाछ जो है वो भी अगर आप जीरा और नमक डालकर एक दो बार पी लें तो उससे भी आपको लू से बहुत सी राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर त्वचा और शरीर की अगर बाहरी ठंडक की बात करें तो चंदन का लेप आप लगा सकते हैं माथे पर और पैरों के तलवों पर, इससे शरीर की गर्मी शांत होती है। और मुल्तानी मिट्टी का लेप भी आप कर सकते हैं गुलाब जल में मिलाकर।
0: बिल्कुल, और तुम्हें पता है मुझे बचपन में याद है भगवती कि हमारे घरों में नौतपा जब तपता था तो पैरों में मेहंदी लगा दी जाती थी सबके, मतलब पुरुष भी लगवाते थे, और उससे भी काफ़ी ठंडक मिलती है। आप अपने सिर के बालों के लिए जो तेल यूज़ करते हैं, जैसे खोपरे का तेल, उसमें आप थोड़ा सा देसी कपूर डाल दीजिए, उससे भी आपको ठंडक मिलेगी। उसके अलावा आप घर को भी ठंडा रख सकते हैं, तो उसके लिए आप सुबह सुबह जो हवा

0: आ गई घर में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सूरज चढ़ता है तब आप आपके घर के दरवाजे बंद करके उन पर पर्दे डाल दीजिए, खिड़कियों पर भी पर्दे डाल दीजिए, ताकि आपका घर जो है वो ठंडा रहेगा। और आप घर के अंदर कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो आपके घर की हवा को शुद्ध रख सकते हैं, और शाम होने के बाद फिर से नई हवा का जो संचरण है वो अच्छे से हो जाए, उसके लिए आप वापस से खिड़की दरवाजे खोलें। आप अपनी छतों पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं, वो भी आपको काम देगा। और घर में हल्के रंग के पर्दों का, हल्के रंग के बेडशीट्स का, कुशन का उपयोग करें, और खुद भी कॉटन ज़्यादा पहने, सूती कपड़े ज़्यादा पहने और अपने सर को
1: सूती
0: कवर
1: का
0: करके चलें, है
1: अगर
0: ना।
1: आप करेंगे सूती का इस्तेमाल, तो आपको निश्चित ही ठंडक की जो है अनुभूति होगी। और दिन में लू चलती है तो आपके घर में जो है वो गर्म हवाएं जो है वो भर आती है, तो ऐसे में ज़रूरी है खिड़कियां दिन में लगभग बंद ही रखें।
0: बिल्कुल। और एक और बात, बहुत लंबे समय तक तेज धूप में नहीं घूमें और बहुत पसीने में एकदम से ठंडा पानी ना पिएं।

0: बस अब तो एक मैच बचा है इस धुन के साथ में जुड़ा हुआ, है ना?
1: बिल्कुल हो रहा है। देखिए, गुजरात टाइटंस की टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है और शुक्रवार को आईपीएल 19 के क्वालिफायर 2 में टीम ने राजस्थान रॉयल को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात को 215 रन का लक्ष्य मिला था जो उसने 18.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 104 रन बनाए, आईपीएल करियर का 5वां शतक जमाया।

0: जबकि साथी ओपनर साई सुदर्शन ने 58 रन बनाए और अर्धशतकीय पारी खेली। गुजरात की टीम 5 सीजन में तीसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है और अब टीम दूसरे खिताब के लिए 31 मई को बेंगलुरु से भिड़ेगी। गुजरात ने 2025 के बाद पहली बार लीग में 210 प्लस रन चेस किए। और देखिए ऑरेंज केप की बात करें तो 776 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी राजस्थान टीम से पहले स्थान पर है। और पर्पल केप की बात करें तो कगिसो रबाड़ा ये गुजरात टीम से है और 28 विकेट लेकर पहले स्थान पर है।
1: तो नमस्कार उदयपुर में अभी आईपीएल अपडेट हमने हमारे श्रोताओं को दे दी और हम बात करते हैं कुछ अच्छी खबरों की जो हमें आज सुबह मिली है। तो एक राहत की बड़ी खबर यह है कि 40 डिग्री गर्मी के बीच में अघोषित कटौतियां अब कुछ कम हो जाएगी। दरीबा में 220 केवी का नया ग्रिड शुरू हो चुका है जिससे उदयपुर को मिलेगी अतिरिक्त बिजली।
0: ये जो ट्रिपिंग होने वाली जो खबरें हैं ना वो आपको उससे राहत मिलेगी और साथ ही साथ शहर में प्रतिदिन 50 लाख यूनिट की अभी खपत हो रही है और जुलाई तक ये 60 लाख यूनिट पहुंचने का अनुमान है। तो इस लोड के कारण शहर में सभी इलाकों में दिन में 5-5 बार ट्रिपिंग हो रही है। 2 माह में दो बार 2 से 6 घंटे घोषित पावर कट भी हो जाता है कई बार, तो इससे राहत मिलने वाली है।
1: बिल्कुल। और एक और खबर राज्य सरकार की तरफ से है, इन्होंने जारी किया है एक संशोधित नियमों का ड्राफ्ट जिसमें प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 30 जून 2016 से मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ। तो ये थी कुछ खास खबरें, एक गाना सुनते हैं और उसके बाद आगे की बातें करेंगे।

0: बिल्कुल, मोहब्बत से दुनिया चलती है, सांसों से जीवन चलता है।
1: सही कहा आपने, क्योंकि देखिए मोहब्बत ही है जो आपको हमेशा सदाबहार बनाए रखती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खान पान में होती है तो भी सदाबहार बना रहता है, है ना।
0: इशारा समझ में आ रहा है, क्योंकि हम हमारे श्रोताओं को पहले ही कह चुके हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय
1: आलू दिवस।
0: आलू दिवस, और आलू ऐसी चीज़ है, ऐसी एक सब्जी है, भगवान की नेमत है, जो मम्मियों के लिए बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर किसी भी सब्जी में थोड़ा सा आलू डाल देंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी बन जाएगी, कि वो गाढ़ी हो जाएगी अगर वो ग्रेवी वाली है, और बच्चे अगर हरी सब्जी नहीं खा रहे हैं तो वो आलू डाल के खा ही लेंगे।
1: हरी सब्जी में आलू आप किसी में भी डाल दीजिए, वो अच्छी लगेगी आपको, है ना। और अगर हम बात करें तो आज जो है 30 मई को आलू दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र से हुई थी, जहां हजारों वर्षों से ये उगाया जाता रहा है, और 16वीं शताब्दी में ये यूरोप पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया, और इसका पहला आयोजन हुआ था 2024
0: में। आलू में बहुत अच्छा पोषण भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही हैं, साथ ही उसमें आयरन भी होता है, और आलू एक ऐसी फसल है जो खाद्य सुरक्षा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। 2026 इस साल आलू का जो ये दिवस का थीम है वो है वेयर पोटैटो ग्रो लाइवलीहुड फ्लरिश, मतलब जहाँ आलू उगाया जाता है वहाँ आजीविका फलती फूलती है।
1: ये आपने सही कहा कि आलू की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, विशेषकर जैसे छोटे और महिला किसानी है ना, उनके लिए तो बढ़ते ही हैं। आलू की खेती में तुलनात्मक रूप से पानी और भूमि की आवश्यकता कम होती है, और इससे पर्यावरण के लिए अनुकूल फसल जो है वो होती है।
0: हमने कुछ दिन पहले देखा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो, जिसमें ऊपर टमाटर लग रहे थे और नीचे गमले में से आलू निकल रहे थे। तो आलू जिस तरह से ऐसे इजीली उगाया जा सकता है, वैसे ही आलू को इंडियन खाने के अलावा भी जो हमारे आसपास के देशों के जो भोजन है उनका हम भारतीय खाने के साथ अगर फ्यूज़न करते हैं तो आलू बड़ा इंटरेस्टिंग सा नज़र आता है हर डिश में। आप उससे स्वीट डिश भी बना सकते हैं, आप उससे नमकीन भी बना सकते हैं, आप उससे ऐसे भी खा सकते हैं। और तुमने देखा होगा भगवती कि 2 रुपए किलो वाला आलू जब चिप्स बन जाता है तो वो 200 रुपए किलो बिकता है।
1: हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हाइड्रेशन की, तो देखिए आलू की लगभग जो है 75 से 80% पानी होता है जो कि शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है, और दुनिया का जो सबसे दूसरा आलू उत्पादक देश है वो भारत है, पहले नंबर पर चीन है, और अगर भारत की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रमुख जिले हैं।
0: आलू की दुनिया भर में 4000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, और मुख्य रूप से 7 प्रकार के आलू बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें रसेट, लाल, पीले, सफ़ेद, बैंगनी, फिंगरलिंग और पैटेट, ये नाम है। तो अब आप, आज शनिवार है तो आलू का कोई ना कोई व्यंजन बनाइए और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाइए।

वीकेंड वाला ये नमस्कार उदयपुर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लिग सिटी की चैनलों से एक साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वीरा, मेरे साथ भगवती है। इस गाने को एंजॉय कीजिए और थोड़ी देर बाद सुबह के 9 बजेंगे जहां पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। हम आपसे फिर मिलेंगे 9:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले दो दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों

0: साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमीशनिंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया।

0: इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले दो दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.6 मीटर और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी उदयपुर एफएम रेडियो लेक सिटी से हम बोल रहे हैं। नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ अब बढ़ते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त बीना और मेरे साथ

0: तिलक्षकर। और अब जो है बात करते हैं मेवाड़ में अतिथि सत्कार की। और देखिए अतिथि सत्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ अतिथि देवो भव के मूल मंत्र पर आधारित हमारा परंपरा चलती है।
1: बिल्कुल, और देखो भगवती, हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है कि जो एक के घर का पाहुना है या पाहुना है या मेहमान है, अतिथि है, वो पूरे गांव का अतिथि है, है ना। और हमारे यहाँ तो परंपरा भी है कि जो अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, तो तिलक लगाकर, हमारी मेवाड़ी पाग पहनाकर, फूल मालाओं से, मीठे शरबत से, बहुत तरीके से, मतलब जितना हो सके कि मेहमान रीझ जाए, खुश हो जाए, उतने
0: पूरी विनम्रता के साथ,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और पारंपरिक स्वागत की जो हमारी परंपरा है तो हम तिलक तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ अगर भोजन की जहाँ तक बात आए तो जब तक सबसे सर्वोत्तम से सर्वोत्तम भोजन जो है उनके सामने परोसा जाता है और पूरे मनोहार के साथ परोसा जाता है। और ये मनोहार की जो परंपरा है ना वो बड़ी ही प्रसिद्ध है मेवाड़ की।
1: मेवाड़ की, बिल्कुल, मेवाड़ी मनोहार कहते हैं कि मतलब पीछे पढ़ पढ़ के खिलाया जाता है कि भाई नहीं नहीं आपको तो जीमना पड़ेगा। और बड़े शुद्ध वातावरण में और पवित्र मन से मेवाड़ी जो होते हैं वो बिल्कुल अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा जो कुछ एक लोक संगीत भी है उसमें भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं। तो जो परंपराएँ थी, जैसे अगर कहीं बारात आ रही है तो बारात के स्वागत के भी गीत होते हैं, विदाई के भी गीत होते हैं। और हमारे यहाँ तो जो मेवाड़ का एक शब्द है पधारना, वो आने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और फिर आने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम जाने को तो कहते ही नहीं कि भाई फिर से पधारना। और एक और अच्छी बात अगर तुमने देखी होगी कि हमारे गाँव में अगर जैसे शादियाँ थी पुराने ज़माने में होती थी, अब तो रिजॉर्ट्स में होने लग गई, तो पहले क्या होता था कि जैसे किसी के घर एक बारात आती थी तो पूरा गाँव उनके स्वागत में लग जाता था। और हमारे घर के मेहमान किसी और के अड़ोस पड़ोस में भी हम ठहरा देते थे तो उनको लगता ही नहीं था कि हम असली ब्याही सगों के घर रुके हुए हैं या पड़ोसियों के घर रुके हुए हैं। इतना अपनापन, इतनी अपनायत हमारे संस्कृति में हमेशा से रही है।
0: ये बात आपने सही कही, क्योंकि देखिए जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं, है ना, तो कई लोग जो है हमारे आस पड़ोस के होते हैं वो उनको चाय पे मनोहार के लिए बोलते हैं, है ना, कि चलिए हमारे घर चलिए चाय पे नाश्ते के लिए, है ना। ये परंपरा जो है हमारी मेवाड़ की बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है। साथ ही साथ में हम जो है हमारा घर तो खोल ही देते हैं और घर में कई बार जब बड़े आयोजन होते हैं तब उनके सोने की भी व्यवस्था की जाती है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं उनके लिए कि उन्हें जो पसंद हो हम उन्हें खिलाएं। हमारे जो देसी व्यंजन है वो कई कई दिन तक ख़राब नहीं होते, वो बहुत एडवांस में बना लिए जाते हैं इस तरह के कभी कोई आयोजन रहते हैं। और एक और परंपरा हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, इसको कहते हैं पामणा पोई। मतलब अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आए हुए हैं और मैंने तुम्हें अपने घर निमंत्रित किया है तो मैं ये कहूँगी कि जो तुम्हारे घर के मेहमान हैं वो भी हमारे मेहमान होंगे। तो ये बड़ी सुंदर सी परंपरा हमारे हमेशा से रही है। और गीत संगीत में हम हमेशा एक जो गीत सुनते हैं कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, तो वो तो सबसे अनूठा है पूरे विश्व में, पूरे विश्व के पावनों को हमारे यहाँ आमंत्रित करता हुआ।

0: अतिथि परंपरा में अगर हम बात करें तो आजकल रील्स बनाने की भी अपने अंदाज है ना, और सोशल
1: बिल्कुल
0: मीडिया के मज़ेदार ट्रेंड्स जो है इन दिनों चल रहे हैं, और कई ट्रेंड्स चल रहे हैं जैसे आप सहज बातचीत करने वाले वीडियो, एआई की मदद से बने क्रिएटिव पोस्ट, ट्रेंडिंग जो ऑडियो है आधारित शॉर्ट फॉर्म वीडियो का सबसे ज़्यादा बोलबाला इन दिनों चल रहा है।
1: बिल्कुल, तुमने देखा होगा कोई साड़ी का ट्रेंड चलता है, कभी कोई अपनी तस्वीर को बुजुर्ग बना देता है, या बच्चों की, या कार्टून बन के हम आ जाते हैं, अपने ही फेस को कार्टून से बदल देते हैं। और आजकल तो नया चल रहा है कि अगर आप अपने आप को किसी ड्रेस में देखना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में देखना चाहते हैं, तो वो फोटो भी आपका बन के आ जाता है।
0: और ट्रेंड्स की बात करें तो रोज़मर्रा के जो सामान्य होते हैं ना, फनी और बिना एडिट किए हुए जो पल है, उनको लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे
1: शेयर कर
0: हैं,
1: रहे
0: है
1: हैं
0: ना।
1: आजकल,
0: और
1: बिल्कुल
0: लोग अपनी सुबह की चाय से लेकर रात के रूटीन तक छोटे छोटे पल मज़ेदार अंदाज को साझा कर रहे हैं, और उसमें एनिमेटेड वॉइस ओवर और ट्रेंडिंग जो है गानों का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है।
1: बिल्कुल, कई कई बार ये ना बड़े इरिटेटिंग भी होते हैं, लेकिन ठीक है, ये अभी आजकल का दौर है। अब एक बात हम करते हैं स्मार्टफोन उपयोग में विभिन्न परमिशन और गोपनीयताओं के बारे में, है ना। तो आज के समय में एंड्रॉयड और आईफोन जैसे स्मार्टफोन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। अब इनका उपयोग बैंकिंग, सोशल मीडिया, फोटो, चैट और निजी जानकारी के लिए करते हैं, इसीलिए फ़ोन की परमिशन और गोपनीयता को समझना ज़रूरी है। अब भगवती, परमिशन क्या होती है? जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप हमारी कुछ सुविधाओं तक पहुंच मांगती है, जिसे हम परमिशन कहते हैं। जैसे कि कैमरा एक्सेस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लोकेशन है, कॉन्टेक्ट से फ़ोटोज़ और फाइल्स। उदाहरण के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप को कैमरा और माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी, लेकिन साधारण टॉर्च ऐप को कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, है ना। और गोपनीयता क्यों ज़रूरी है? अगर हम बिना सोचे

0: जहाँ अगर परमिशन दे दी तो हमारी निजी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। कुछ ऐप्स हमारी लोकेशन, फ़ोटो या बातचीत का डेटा इकट्ठा कर सकती है। सुरक्षित जो उपयोग है, इसके उपाय ये है कि केवल भरोसेमंद ऐप ही डाउनलोड करें। ऐप इंस्टॉल करते समय परमिशन ध्यान से पढ़ें, अनावश्यक परमिशन बंद कर दें।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, अगर अनुमतियों के प्रकार की बात करें तो बहुत सारी अनुमतियाँ होती है। ये आपके डेटा और गोपनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाती है जैसे सामान्य अनुमतियाँ होती है। और संवेदनशील और ख़तरनाक अनुमतियाँ होती है, ये आपके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बनाती है। और उन्हें देने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। लोकेशन आपका वर्तमान स्थान ट्रैक करने के लिए होता है, और कैमरा और माइक्रोफोन फ़ोटो वीडियो लेने या आवाज़ सुनने के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट और स्टोरेज आपकी जो है फ़ोन बुक पढ़ने और फोटो गैलरी तक पहुंचने के लिए होता है। तो ये कई प्रकार है जिसमें आपको बहुत सोच समझकर परमिशन देनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट का उपयोग करें। समय समय पर ऐप्स की प्राइवेसी सेटिंग जांचें और सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल संवेदनशील कामों में करने से बचें। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल फर्जी लिंक, नकली ऐप, OTP धोखाधड़ी बहुत हो रही है, तो इनसे सावधानी ज़रूरी है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी साझा नहीं करें। स्मार्टफोन का सही और सुरक्षित उपयोग हमें तकनीक का लाभ देता है, जबकि गोपनीयता की सावधानी हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सोच समझकर आप अनुमति दें, और अनुमति अगर आपको वापस लेनी भी है तो आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर किसी भी ऐप की अनुमतियों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप सेटिंग में जाएंगे और ऐप्स की परमिशन में जाएंगे तो ये सारी जो है सुविधाएं आपको मिल जाएगी।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि विज्ञान अगर वरदान है तो विनाश का कारण भी बन जाता है। तो ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या अभी जो आजकल के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, इनका उपयोग अगर हम ढंग से सीख पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और हम अनुमति की बात कर रहे हैं तो एक गीत के साथ हमारे श्रोताओं को आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में छोड़े जाते हैं, और हम लेते हैं आज के कार्यक्रम से अनुमति। मैं थी आपकी रेडियो दोस्त मीना, और मेरे साथ
1: भगवती लक्षकार।
0: हम फिर मिलेंगे।
1: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुबह की सूचनाओं, मनोरंजन और जानकारियों भरा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आपको सुनवाएं सुगम संगीत।

वही हमेशा का आलम है, क्या किया जाए। अभी आप सुन रहे थे ये गजल, आवाज चंदन दास की थी। सुगम संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं अगली गजल।

थक गया हूँ याद तुझको करते करते, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में जब ये गज़ल गाई तो ये गज़ल अमर हो गई। सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं चंद गज़लें।

तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं। ये आवाज़ चंदन दास की थी। आइए एक और गज़ल आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अभी जो गजल आपने सुनी आवाज आशा भोसले की थी। एक बार फिर से सुनिए आशा भोसले को, और ये सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए। आशा भोसले की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर पर। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम शीर्षक गीत का। आज का शीर्षक है आँखों का एक बड़ा खूबसूरत पर्यायवाची, नैना।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ,

भ्रष्टाचार, ये था फिल्म का नाम। आवाजें थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। शीर्षक गीत का आज का शीर्षक नैन। नैन, नैनों की एक अलग भाषा बोलते हैं जो सिर्फ नैन समझ पाते हैं।

धड़कन की सरगम से नैनों के कागज़ पे एहसासों के खत लिखे जाते हैं। ये फिल्म थी अनजाने, जो 1995 में रिलीज़ हुई थी। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। आज के शीर्षक गीत कार्यक्रम का शीर्षक है नैन, यानी आँखें। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद कुछ और गीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: याद रखेगी दुनिया, ये था फिल्म का नाम, आवाज़ अमित कुमार की थी। आइए आपको सुनवाएं इसी शीर्षक से एक और गीत, ये भी अमित कुमार और साथियों का गाया हुआ है। फिल्म का नाम है प्यार का कर्ज।
1: 1 2 3 4

श्रोताओं, शीर्षक गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। कुछ और गीत, थोड़े से और पुराने जमाने के, लेकिन शीर्षक वही नैन। एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनवाते हैं।

शीर्षक गीत का शीर्षक नैन। नैन शीर्षक से जहां नई फिल्मों में गीत बने, वहीं पुराने सदाबहार गीतों में भी ये शब्द बहुत बार मुखड़ों में आया है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। ये फिल्म थी आरोप, और अगला गाना लता मंगेशकर के स्वर में है।

नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। लता मंगेशकर का स्वर था, फिल्म थी वो कौन थी। आज का शीर्षक है नैना, शीर्षक गीतों का ये कार्यक्रम आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी बीना। कुछ और नगमे हैं जहाँ पर भी नैनों के बरसने की ही बात हो रही है।

आवाज़ लता मंगेशकर की थी, ये फिल्म थी मोहब्बत। और एक और बार लता मंगेशकर को ही सुनते हैं, शीर्षक नैन से। ये गीत हमने लिया है फिल्म मेरा साया से।

ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है नूर महल, आवाज मोहम्मद रफी की। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लीजिए और दीजिए आगे आपके रेडियो साथी बीना को शीर्षक गीत कार्यक्रम से और आकाशवाणी उदयपुर की इस प्रातःकालीन सभा से। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1025 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इसमें सुनिए बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: बीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: वो दो सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: हो गया इंतजाम
6: किसका
5: गुड्डी की फीस का
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार एडवांस में भेजिए
7: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग मियां की तोड़ी सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम के पहली गजल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की मिली जुली आवाजों में।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने जगजीत सिंह की गाई गजल सुनी। कार्यक्रम की अगली गजल सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
1: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

रूप कुमार राठौड़, माफ़ कीजिएगा, जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा, किशोर कुमार की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

जहरीला इंसान, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म थी स्वयंवर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बंदिश से आशा भोसले और किशोर कुमार की मिली जुली आवाज़ों में।

0: कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: स्वीकार किया मैंने, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म हीरा पन्ना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाई माधोपुर के बाडूलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह PSBA के सहयोग से विकसित किया गया है। PSBA देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और 2 निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड

0: कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। बहनें आप सुनेंगी कार्यक्रम सहेलियां निबाड़ी।

0: राम राम अनीता भैसा,
1: राम राम नीमा भैसा, राम राम।
0: और हेलियारी वाड़ी कार्यक्रम होनवा वाली अपनी सभी सखी सहेलियां और हाथणिया ने आपनो
1: राम राम,
0: राम, राम सा। देखो अपनो कार्यक्रम नो टेम यो, देखो अनीता भैसा ने बीना भैसा ने और आपने देखो ये झमकू भाई ने गीता भाई ने और
1: सब आपने
0: नर्मदा भाई ने सब अटे आई की है, भेड़ी वेगी है। देखो तावड़ा रा दन है।
1: हाँ हाँ।
0: और खेती बाड़ी रो काम निपटियो, डांडा चोपरो काम निपटियो
1: बिल्कुल।
0: और थोड़ा रोटी बाटी खाई थोड़ा फारी गया तो बेटा हाँ आपी अटे तो थोड़ी घनी आपने देखो जीव भोलो करा।
1: हाँ।
0: तो सुख दुख री बात ही करा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ी आपने ज्ञान विज्ञान री बात ही करा, थोड़ी जानकारी देवा और थोड़ा देखो नाचा कूदा गाना भी होना सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो सा आज आप अपनी बिना ने बतावा विचार वाली बात में कि जो मासिक उपलब्धियां हैं वह मासिक उपलब्धियां कई वे सके यार नो मतलब आप इन्हें कई निकाल सके। हाँ
0: मतलब यो कि आप एक महीना में आप कई की दो।
1: हाँ सा
0: है नी सा। एक तो यू आप हो चा कि आज आको दर निकलो अपन हो तो आप कई की दो।
1: बिल्कुल सा।
0: एक हफ्तों निकले कि भाई आप अणी हफ्ता में आप कई की दो। अणी तरीके हूँ आप एक महीना में कई चीज बढ़िया की दी वर्ने बारा में आप यहाँ जानकारी दंगा सा।
1: बिल्कुल सर। एक महीना री अवधि रे भीतर हासिल की थी तो कि जितनी भी सफलता है उन्हें पूरा की तो थको लक्ष्य है ये महत्वपूर्ण कार्य ने रिकॉर्ड वे वह सा अंडो उपयोग अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य वास्ते किए जावे सा। जिस तरह की आप बात करा कि आजीविका और स्वयं सहायता समूह रे संदर्भ में तो अगर आप कहीं स्वयं सहायता समूह या पे ग्राम संगठन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन नु आप जुड़ा तो मासिक जो उपलब्धियां है वे अणी में सब शामिल हो जावे है सा। तो वणी में हाँ।
0: और देखो बचत और ऋण री जटे बात करा तो आपने यूं भी हो सका कि आपने अणी मिना में आपने कतरी बचत की दी।
1: हाँ सा।
0: है नी सा। और कतरो खर्चो की दो, कई चीज आपने कटे आपी खर्चो की दो, कतरो बचाई और कतरा पैसा किने दीदा।
1: अणी
0: तरीके हूँ आजीविका री गतिविधियां री जटे बात करा तो कतरी आपने बेना है वी छोटा छोटा उद्योग धंधा भी करे है।
1: हाँ।
0: घरे जैसे अचार बनावे, पापड़ बनावे, सिलाई करे है और नरी यानी पापड़िया बनावे और छोटो मोटो काम करे, कोई हो पीसणो ही करे, कोई
1: बिल्कुल सा।
0: करे।
1: हाँ।
0: तो यो चढ़ो कि यानी पूरा महीना में मैं कतरो काम की दो, कतरो कमायो, कतरो वंचियो और कतरो मारे सामान
1: खर्च भी गयो सा। और अन्य अलावा देखो अन्य बैठक री बात करा तो देखो महीना में नियमित रूप कतरी बैठक आयोजित की दी यो भी यानी में वे कि आप महीना में एक बैठक की दी, दो बैठक की दी और हाथे हाथे सदस्य आए पचे पदाधिकारी जिस तरह की बैंक सकी है, कृषि सकी है, अन्य वास्ते जो भी आयोजित किया था प्रशिक्षण कार्यक्रम है वनडे।

0: में भी ट्रेनिंग देनो, ये सब अपनी पूरा मासिक उपलब्धि में शामिल हो वैसा।
1: बिल्कुल सर। और अन्य अलावा अगर आप खेती बाड़ी की बात करा तो फसल प्रबंधन रे मायने आपने यो होचणो है कि अड़ी महीना में आपने जैसे कोई भी महीनो ले लो,
0: हाँ,
1: है ना सर, कि भाई अड़ी महीना में आपने कई करनो, टेम पे वही करनी है, टेम पे खाद जैसे फास्फोरस या वर्मी कंपोस्ट आप ही नाख्यो नहीं के नाख्यो, कीटो नियंत्रण की तो नहीं की दो। अन्य अलावा आप बात करा कि तकनीकी उपयोग, जब मैं खेती में नई तकनीकी या आधुनिक उपकरणों जैसे कि ड्रोन हूँ आपने कहीं भी दवाई छाटनी है या आपने जो मिट्टी रो परीक्षण है वो करवायो कि नहीं करवायो, ये जो काम है ये आपने एक एक महीना रहा एक अपने टारगेट यानी कि एक लक्ष्य बनाई लेना कि ये काम आपने करना है।
0: बिल्कुल सर। और हाथ हाथ अगर आप खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं तो देखो उनमें उत्पादन कतरो भी है, बिक्री कतरी भी है, यानी कि पूरा महीना दौरान तो आप कतरी तो अपने उपज मिली है और वहीं में अपने कतरो मुनाफो भी है, अंडो भी अपने पूरा रिकॉर्ड रखना चाहे सा। और अगर आप बात करा कार्यालय की या पे कॉपरेटिव क्षेत्र की अगर आप बात करा तो देखो नौकरी है, बिजनेस है, आणी में भी जो मासिक उपलब्धियाँ हैं, वनडी काम की जो समीक्षा है वनडो भी हिस्सों वे, यानी कि निर्धारित चतरो भी मासिक टारगेट है विने अपने टाइम पर पूरा करना चाहे, कहीं विशेष प्रोजेक्ट है तो वनडे भी सफलतापूर्वक विने कंप्लीट करना चाहे, या पचे आप टीम वर्क कर रहा है या कार्यप्रणाली में जुड़े तक है तो कोई सकारात्मक बदलाव भी रहे तो वहीं में सुधार लाना भी बहुत जरूरी है।
1: देखो ये सब काम तो भी आ बाल आ लेकिन आपने खुद रो ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है। तो अन्य बात है आपने एक नई नई आदत नाखनी है जैसे आपने नियमित व्यायाम करना है रोज दे और कोटे भी घूम मतलब पग पग चालनो है, कभी कतरो गया कतरो कोई भी किताब है अखबार है यो भरनो है। अन्य अलावा कि जैसे आपने जब घरे बाल बच्चा वे वनारी शिक्षा में कई आपने हिकायो वनाने या वनारे पिछला में नंबर कतरा आया और अबे माँ अतरो बढ़िया करा कि बनाने आगला नंबर बढ़े आवे,
0: बिल्कुल
1: तो यो भी आपने महीना रो एक टारगेट रखना चाहिए।
0: तो देखो या तो अपनी बहना ने अतरी बढ़िया बात बताई कि मासिक उपलब्धियाँ कई कई वैसे के हर क्षेत्र के बारे में आप ने जानकारी दी थी सर। और अभी को तो अपनी बहना ने एक बढ़िया राजस्थानी लोकगीत सुनाओ सर।
1: बिल्कुल होना सर।

0: तो अनीता भाई सा हुणियो यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत और लारे लारे हुणियो संदेश। और अबे आप अपनी बेना ने जानकारी देवा डिजिटल रिकॉर्ड कई वे और अन में कई कई आप रिकॉर्ड कर सका।
1: बिल्कुल सर, देखो डिजिटल रिकॉर्ड की अगर आप बात करा तो नो मतलब यो है कि जो असा दस्तावेज फाइला सूचना वे जड़ी मैंने आप इलेक्ट्रॉनिक रूप वणी में बनाई सका हाँ, उन्होंने प्रोसेस कर सका, उन्होंने स्टोर कर सका और उन्होंने एक स्थान और दूसरी जगह पर उन्होंने ट्रांसफर भी कर सका हाँ। मतलब आसान शब्द में आप कहा तो जड़ी जानकारी ने आप पहला कागज पर लिखी फाइला में रखता है वना ने अब आज यानी टाइम पर आप कंप्यूटर में है मोबाइल में या पच्चीस सर्वर में सुरक्षित रखी और डिजिटल रिकॉर्ड ने तैयार रखा सा, इन्हें आप डिजिटल रिकॉर्ड कहवा।
0: बिल्कुल सर, डिजिटल रिकॉर्ड पे जैसे आप दस्तावेज है पीडीएफ वर्ड फाइल एक्सेल शीट अड़ा में भी कर सका
1: हाँ।
0: मीडिया फाइल्स जैसे कि आपने फोटो है तस्वीर है ऑडियो वीडियो ये भी रिकॉर्ड कर सका। और आधिकारिक रिकॉर्ड रे बात करा तो जैसे डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट ईमेल और टैक्स रिटर्न भी आप कर सका। सरकारी और वित्तीय डेटा री जैसे बात करा तो ई पैन कार्ड डिजिटल आधार बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन लेन देन भी रो इतिहास भी यानी कि अपने आप ही रिकॉर्ड कर सका सर।
1: बिल्कुल सर, देखो या तो बात भी कि डिजिटल जो रिकॉर्ड वे उन्हें कई कई वे सके और अभी आप बात करें कि डिजिटल रिकॉर्ड का जो फायदा वे फायदा कई वे सके है सर। देखो स्वाभाविक है आसान यो पहुंच सके, मतलब कि आप आनी दुनिया में कहीं भी कोना में इंटरनेट के जरिए कहीं भी जानकारी है कहीं भी सूचना है या कहीं रिकॉर्ड भेजना है तो आप कुछ ही सेकंड में आप इन्हें भेज भी सका या पचा आप देख भी सका हाँ सा। और अंडे अलावा जगह और बचत की बात करा तो देखो कागजी फाइला में रखवा वास्ते बड़ा बड़ा कमरा है अलमारिया है वनी जरूरत पड़े सा, जदि कि लाखों डिजिटल रिकॉर्ड एक छोटी सी हार्ड डिस्क या पचाप क्लाउड स्टोरेज है वनी में आराम आ सके है सा।
0: और देखो ये सुरक्षित और टिकाऊ भी है वे कागज समय रे ला देखो खराब भी वे जा फाइला है कही है आग पानी कई पी वे तो वणियो नष्ट भी वे जावे खराब वे जावे। और डिजिटल रिकॉर्ड पोस्ट जो पासवर्ड वे एन्क्रिप्शन वे और बैकअप रे जरिए आपी अने कई साल तक आप सुरक्षित रख सका सा।
1: बिल्कुल सा, और अणी में सबों अच्छी बात है देखो सब बढ़िया फायदा आप कहा तो अणी में लागत में भी कमी आवे सा, कागज है प्रिंटिंग है फाइलर रख रखा है यो कम खर्चा में पूरी तरह आप अणी में रखी सका हाँ सा। और हाथे हाथे पर्यावरण अनुकूल भी वैसा कागज इस्तेमाल नहीं व्यवहार कारण पेड़ की कटाई भी कम वेती जावे सा।
0: बिल्कुल सा, तो यो तो आपने बिना ने जानकारी दी थी कि डिजिटल रिकॉर्ड कई वे किस तरह कर सका और अणी में कई कई वे सा। तो अभी आपने बिना ने एक और राजस्थानी गीत सुनाओ सा।
1: हाँ सर।

0: सुंदर गोरी ये हुणे यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और देखो अबे आपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बेना ने जानकारी देवा कि आपने गृह उद्योग है वनडो विस्तार किस तरह करना है।
1: बिल्कुल सा, देखो गर्रा स्तर पर चलाया जावा वाला जितना भी छोटा छोटा व्यवसाय है जे पारंपरिक शिल्प या पचे लघु निर्माण करे दायरे उत्पादन और बाजार में बढ़ावा देवे सा। यदि कोई छोटो ग्रामीण है या पचे शहरी उद्यमी है वो अपने घर में किधर तक का किदा वाला जितना भी काम है वना ने एक नया स्तर पर ले जावे हैं, जानियो कि नई तकनीक ने अपनावे हैं या पाकी सका अधिक लोग वनी ने जोड़ीन अपने काम ने बढ़ावो देवे हैं और उन्हें गृह उद्योग रो विस्तार आपा कही सका। हाँ सा
0: बिल्कुल सा। और देखो जटे एक उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी वेवे शुरुआत में गृह उद्योग में हाथ उमू काम लेवा जैसे पापड़ रे बनावारी स्वाद कर ला। पहले जो पापड़ बनावता है लुगाया हाथ वणाई वेचती भी है सब करती, लेकिन अबे कही है कि हाथ जो पापड़ बनावे वंटवारी जगह है बनाने कही है कि मशीन आएगी तो मशीन वेवा लागे गया तो वो कई उद्योग रो धंधो ले लीधो।
1: बिल्कुल सा।
0: और इस तरीके जैसे सिलेरी बात करा तो सामान्य सिलेरी में जैसे अम्ब्रेला पिको मशीन को उपयोग करनो है तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे यो बदलाव वे तो जेरो। और जी छोटे छोटा छोटी छोटी जी चीजा है जो छोटा छोटा जी काम है वे उद्योग में परिवर्तित।
1: बिल्कुल सर। और अन्य वास्ते वित्तीय सहायता और लोन री की अगर आप बात करना तो देखो उद्योग ने बढ़ावा वास्ते पूंजी की आवश्यकता व्यवस्था और अन्य वास्ते अपने सरकार जितनी भी योजना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम वित्तीय मदद भी अणिमें आप ले सक। हाँ सा, मुद्रा योजना की भी अगर बात करना तो अणिमें भी पीएम स्वनिधि है ऐसी योजना जो कम ब्याज पर अपने लोन मिल सके हैं तो ये लोन लेने भी अपने बिना इन्हें गृह उद्योग विस्तार कर सके हैं सा।
0: बिल्कुल सर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रे तहत स्वयं सहायता समूह ने भी फंड मिले सा। बाजारों विस्तार और ब्रांडिंग की जटे बात करा तो तैयार मार सिर्फ अपने अड़े बड़ेरा गांव या स्थानीय बाजार तक ही सीमित नहीं राखी बड़ा ने बड़ा बड़ा बाजार तक पहुंचावे है सा। और पैकेजिंग और ब्रांडिंग की बात करा तो उत्पाद ने बिल्कुल आकर्षक बनानो वनी जो पैकिंग करा वह बहुत ही बढ़िया करनी सुरक्षित करनी ताकि वह खराब नहीं वे ज्यादा टाइम तक। और प्रदर्शनी और मेला जटे भी लागे तो वटे अपनो जो भी उत्पाद है ले जानो वटे मतलब वेचनो और विने लोगों ने बताना कि यूपी की चीज है।
1: बिल्कुल सा।
0: अन्य अलावा डिजिटल माध्यम जैसे कि आपने मोबाइल है अन्य माध्यम देखो आप अगर मोबाइल देखा तो नरे थकी बेना आपने ऐसा छोटा छोटा काम ने मोबाइल पे बताई रही है।
1: बिल्कुल सा।
0: तो आप भी यानी मोबाइल के जरिए बताई सका और आपने यानी मोबाइल के जरिए भी बेच सका।
1: बिल्कुल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपने सीधा ऑर्डर ले सका और इन्हें बेच सका। हाँ सा। और कौशल विकास और प्रशिक्षण की बात करा तो देखो काम ने पेशेवर तरीकों करवा वास्ते नया तौर तरीका सीखना बहुत जरूरी है वैसा वणी कई कि जो उत्पाद है वनडी गुणवत्ता ने एक समान बनाए रखवार वास्ते भी वन में ट्रेनिंग दी जावे सा। हाइजीन की अगर आप बात करा तो साफ सफाई है खाद्य सुरक्षा मानकारी बात करा तो वन में भी FSSA लाइसेंस ये सब की जानकारी अपने हाउतरो वेणी चावे सा। और व्यवसाय रो हिसाब किताब रखवार वास्ते बुनियादी जितना भी प्रशिक्षण है वनडो अपने सारो लेना चावे सा।
0: और देखो सामूहिक शक्ति की बात करा तो यदि कोई भी गृह उद्योग है अगर नरी धारी लुगाया मिलीन बनाई रही है तो असो उत्पाद बनाई रही तो विने एक समूह जिन्हें कि आप क्लस्टर भी कही सका वो बनाई सके। और अणमें जो कही है कच्चो माल थोक में मिल जावे सस्तो मिल जावे और बड़ा ऑर्डर जो है पूरा करवा में आसानी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपने बिना ने तो आप यूज कहना चाहवा कि फालतू घरे फ्री बैठो अच्छो है कि आप कड़ी में जो काम आपने आवे वन में दिमाग लगावा और छोटो मोटो कोई उद्योग धंधो करा ताकि दो पैसा आपने आई सके।
1: बिल्कुल सा। तो देखो या तो आप अपनी बिना ने जानकारी दी सा और अभी को तो अपनी बिना ने एक और बढ़िया राजस्थानी लोग सुने दा सा।
0: बिल्कुल होना सा।

0: तो यो तो हुणियो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और देखो अबे अपनी बहना ने जानकारी देवा कि अपने स्वयं सहायता समूह है, महिला समूह री बैठक में
1: हाँ
0: कई कई आपी काम करा, कई कई आपी रूपरेखा बनावा और वनी काम ने किस तरह आपी अमल में लावा सा।
1: बिल्कुल सर। देखो महिला समूह की बैठक की व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रेरणादायक बनाने वास्ते एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ अटा तक की बैठक की जो एक प्रभावी रूपरेखा है वह वेणी बहुत जरूरी है। यानी कि बैठक की जो शुरुआत है वनों प्रथम चरण कहीं तरह वेणो चाहे यू अपने बिना ने बतावा सा।
0: बिल्कुल सा, सबों पहले ही अपने शुरुआत जटे बैठक की शुरुआत करा वटे महिला समूह री महिला द्वारा सामूहिक और प्रेरणादायक गीत तो प्रार्थना करनी चाहे। अड़ू कही वेगा कि माहौल है वो को सकारात्मक बने रहेगा और उपस्थिति और अनुशासन री जटे बात करा तो सब सदस्य है वड़ा री हाजरी एक रजिस्टर में दर्ज कर लेनी, साइन करवा ही लेना कि भाई कौन कौन अड़ी मीटिंग में आयो कौन कौन नहीं आयो। और एक अपने नियम बने लेना कि जैसे मीटिंग वेरी है तो
1: हाँ
0: मोबाइल सबरा साइलेंट रहे,
1: बिल्कुल
0: कोई
1: सर।
0: घड़ी घड़ी बात करवा नहीं जावे, कोई महिला है आपस में एक दूसरे को बात नहीं करे, शांतिपूर्ण तरीका जो बोली रो है वंडी बात होने।
1: बिल्कुल सर। समूह जो सचिव है वो पिछली बैठक की जो कार्यवाही की थी है मैंने भणिन सुनावे ताकि सभी ने यो याद रहे कि पिछली बार कई निर्णय लीधो है और आगे अपने कई निर्णय देनो है
0: और
1: सर।
0: अब बार तक अपने कई काम वे चुके आए
1: बिल्कुल सर।
0: है ना सा।
1: हाँ
0: और मुख्य कार्य प्रणाली और वित्तीय चर्चा री जटे बात करा तो नियमित रूपु जतरी भी अपने बचत जमा भी है जिससे जतरी भी अपने बिना इकट्ठी वेवे साप्ताहिक मासिक राशि जतरी भी इकट्ठी करे हो
1: हाँ
0: रुपया 200 रुपया जतरा भी इकट्ठा करे वने कोषाध्यक्ष ने जमा करे दे।
1: बिल्कुल सर।
0: ऋण और ब्याज वसूली जटे बात करा तो जना सदस्य समूह लोन लीधो है वनारी किस्त और ब्याज री राशि अपने जमा कर लेनी है
1: ठीक है
0: ऐसा।
1: सर।
0: और नया ऋण री जटे बात करा तो कोई भी अपनी बेना है कई डांडा चोपा खरीदना चाहिए, भे है गाय है खरीदना चाहिए,
1: पशुपालन करें मतलब।
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ और नवी खरीदनी चाहिए या बच्चे अपना छोरा छाबरा रे बात है कई भणाई रे बात है कई ऋण लेनो है या कोई भी उद्योग लगाई रही है कोई सिलाई मशीन लेनी है
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: सर।
0: या ब्यूटी पार्लर लगानो है या वनने बातें भी अगर कोई ऋण लेनो चाहे तो बिना ने आवश्यक अपने कागजी कार्रवाई करी और बनाने ऋण
1: ले
0: लेनो है।
1: सके सा। और देखो बैंक और पासबुक और रजिस्टर अपडेट की बात करा तो बैठक के दौरान ही अपने पासबुक है वनो लिखो जी को जो वे बिना अपने कैश बुक यानी वणी में तुरंत अपने एंट्री कर देनी चाहे हैं सा। तो यह तो बात वेगी कि अपने बैठक में कई कई करना है। अंडे अलावा सामाजिक और आजीविका जो संबंध है वनडे बारे में भी बतावा कि समूह केवल पैसा रो लेन देन तक सीमित नहीं हुए बल्कि आप बात करा तो महिला रे सशक्तिकरण रो मंच भी है। यानी कि सरकारी योजना है जिस तरह की आजीविका है या पचे अन्य जितने भी ग्रामीण कार्यक्रम है अंडा भी लाभ कणी तरह उठाना है आणि पर बात कणी तरह करनी है खेतीबाड़ी में कणी तरह काम करना है उन्नत जैविक खेती कणी तरह करनी है या पचे गृह उद्योग रो जो बड़ा वाला तरीको है वणी पे भी आप विचार विमर्श कर सका। यानी कि जितना भी सामाजिक जो भी संबंध है वनने बारे में आपने चर्चा करनी चाहे
0: बिल्कुल
1: सा।
0: सर। लारे लारे गांव री साफ सफाई और अभी अपने लड़कियां री
1: हाँ
0: विशेषकर बेटियां री जो
1: शिक्षा
0: अपने
1: है।
0: शिक्षा है वहीं पे
1: हाँ
0: अपने ध्यान देनो है। अन्य अलावा पोषण और स्वास्थ्य रो भी ध्यान रखना है और पूरा गांव री जितनी भी अपने पीवारा तालाब है या कूड़ा है वड़ा री भी साफ सफाई रखनी, अपने घर में भी साफ सफाई रखनी, जनू कही वेगा कि अपनो गांव एक आदर्श गांव रे रूप में विकसित वेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी नीमा भाई साहब। और देखो स्वास्थ्य से जुड़िया तक जितना भी विषय है वनडे बारे में भी अपने जागरूकता की चर्चा करते रहना चाहे सा।
0: बिल्कुल
1: और
0: सा
1: यदि कोई सदस्य ने कहीं व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है तो वनडो भी पूरे समूह मिलिन वनडो समाधान खोजारो प्रयास करना चाहे सा।
0: बिल्कुल
1: ये
0: सा
1: छोटी छोटी बातों अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखो अपनी जो महिला समूह की बैठक है वह उतरू वेवेगा सा और एक आपस में एक दूसरों अतरा बढ़िया पारस्परिक रूप में अच्छी तरह वे जुड़ी तक रह सके
0: और
1: सा
0: आप एक उद्देश्य जो निश्चित की तो है वहीं तक आप पहुंच
1: पहुंच सके सा।
0: सकेंगे।
1: तो देखो यह तो आप जानकारी दी सा और अभी को तो अपने बिना एक और बड़े राजस्थानी लोग ही सुने दसा।
0: बिल्कुल होना सा।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। फिल्म का नाम केदारनाथ, गायक कलाकार देव नेगी।

बाबुल सुप्रियो के गायन फिल्म हंगामा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विकास चर्चा। विकास चर्चा, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका लक्ष्य शहरी क्षेत्र में सभी बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। सभी के लिए आवास की परिकल्पना के साथ इस योजना की शुरुआत 25 जून सन 2015 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी पात्र शहरी निवासियों को हर मौसम में रहने योग्य पक्का मकान प्रदान करना है, जिसमें पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। योजना का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए इसे 4 प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके तहत झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए उसी भूमि पर निजी डेवलपर्स की मदद से पक्के मकान बनवाए जाते हैं।

इसी के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए नए घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार या निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी में किफायती आवास का निर्माण किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार प्रति घर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस घटक के अंतर्गत उन पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके पास अपनी खुद की जमीन है और वे अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं या मौजूदा घर का विस्तार करना चाहते हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी में इस योजना में 6 लाख तक के होम लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जहां पात्र नागरिक 6.50% की ब्याज दर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह ब्याज सब्सिडी गृह ऋण की एक निश्चित सीमा तक लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रति इकाई यानी प्रति घर 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाता है।

इस योजना का लाभ वे ही परिवार उठा सकते हैं जिनके पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम का कोई पक्का मकान नहीं होगा। आय के आधार पर समाज को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। आर्थिक आय 3 लाख तक, वार्षिक आय 3 से 6 लाख तक और वार्षिक आय 6 लाख से 18 लाख तक। ये हैं 3 वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 लाख, निम्न आय वर्ग के लिए 6 लाख और मध्यम आय वर्ग के लिए 18 लाख। महिला सशक्तिकरण में योजनाओं में महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ा गया है। घर का मालिकाना हक परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति पत्नी या संयुक्त नाम पर ही होना अनिवार्य है।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में दोपहर समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
5: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय

0: हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमे नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CoET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया,

0: जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे।

0: महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। किसान भाई अब सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनिता भाईसा,
1: राम राम नीमा भाईसा, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम मुंडवावाड़ा अपने सब किसान भाया ने और बेना ने अपनो राम राम, राम, राम सा। देखो अपनो कार्यक्रम रो टेम वेओ और अपी आई गया हां सा। और देखो तावड़ो घणो पड़ी रो है, नो तपा वेरो है। और देखो अबार सुबह 9 बजे ना 4 बजे तक आपने सरकार भी बाहर निकलवा वाते मना कर रही
1: है,
0: क्योंकि घनी गर्मी में देखो आपने कटे हाजा मैंदा वे जावा, लू लपट लगी जाए तो नहीं निकलनो छावे। और आपा भी अगर कोई जरूरी काम वे वे तो आपा भी यो स्कीम में कोई भी जरूरी काम वे तो निकलनो, बाकी नहीं निकलनो। और निकला भी तो भी घर कई छाछ है, पानी है या कई केरी रो पानी है, असो कई पी निकलनो तो आपने कही है कि लू नहीं लागे। अंडे लारे लारे आपने जे घर में ढांडा छोपा है, अणबोलिया जनावर है, तो वना ने भी आपने सुबह 9 बजे हांजे 4 बजे तक घर बाहर नहीं निकालना है, वना ने भी छाया में राखना है। तो अड़ी तरीको अगर आपी आपनो आपने झंडा चोपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो नो तपो आराम निकली जाएगा। नहीं तो देखो सा अगर आप हाव चेत नहीं रहेगा तो मांद आपने जट पकड़ेगा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो अनिस देखो बात है अपी केवा कि भाई स्वस्थ रहोगा तो मस्त रहोगा, सब बढ़िया रहोगा, हर चीज आपने बढ़िया लगेगा।
1: बिल्कुल सा। और अनि मस्ती रहते आप सुना बढ़िया राजस्थानी लोकगीत।

0: उड़ उड़ रे मारे काला रे कागला हुणे यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और अबे अपने किसान भाइयों ने जानकारी देवा कि किसाना रे वाते अपने कई कई बीमारा विकल्प है कि कसा बीमा भी करी सका
1: सा। बिल्कुल सर, खेती में जोखिम कम करवाने वास्ते, आर्थिक सुरक्षा ने सुनिश्चित करवाने वास्ते सरकार और बीमा कंपनियां द्वारा कई तरह का बीमा करवाया जावे सा। जनियों का विवेक की फसल है, मौसम है, पशुधन है या पच्चीस स्वयं किसानों भी बीमो वाणी में विवेह है सा।
0: बिल्कुल सा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है भी है या योजना एक राष्ट्र योजना है।
1: हाँ सर,
0: और वर्णे आम में कहिए कि जैसे प्राकृतिक कोई आपदा है, सूखो है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है या कोई भी कीटारो प्रकोप वही जा या कोई भी बीमारी फैल जा और जड़ियों भी ये फसला नष्ट वही जा तो वर्णा नुकसान रे भरपाई रे बात है यो बीमो करो जावे। अणवे किसाना ने बहुत ही कम प्रीमियम देना पड़े। जैसे खरीफ री फसल ने जटे बात करा तो मक्का धान ज्वार रे बात है बीमित राशि रो 2% आपने देना पड़े।
1: और रबी री फसल की बात करा तो जिस तरह की गेहूँ है, चना है, सरसों है, अना सब कुल में बीमित राशि रो अपने 1.5% देना पड़े हैं सा। और हाथे हाथे वाणिज्यिक और बागवानी फसल चने में गन्ना है, कपास है, फल है, अना में बीमित राशि रो 5% व्यवय है सा।
0: और यह जो योजना है ववई रे पहलू चालू ववे यानी कि ववई करे वने पहलू और खड़ी फसल में नुकसान फसल खड़ी है और कोई नुकसान में गयो तो भी वही जावे। और कटाई रे 14 दिन बाद कि भाई आपने खेत में हुकवा बाते फसल छोड़ी दी थी है न वर्का आएगी है या और कोई डूंजो कहीं भी आई गयो है और खराब वेगी है, आग लगी कहीं भी वेगी खराब वेगी है तो भी अणमे यो कवर मिले है सा।
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: लोन लेवा वाला और वना लोन लेवा वाला सब किसान अंडा पात्र है सा।
1: बिल्कुल सर। और देखो पशुधन बीमा योजना की बात करा तो खेती रहते आते आते अपने पशुपालन करवा वाला किसान है वनने वास्ते भी जो अपने बहुत ही अच्छी योजना है कि वनी में भी वे लोन लेन अपने पशु ले सके है सा।
0: राष्ट्रीय पशुधन बीमा

0: बीमा योजना भी है, अणमें गाय भैंस बकरी ऊंट अड़ारो बीमो वे प्रीमियम सब्सिडी भी मिले। सामान्य वर्ग राजी किसान है वना ने प्रीमियम पे 50% और एससी एसटी और बीपीएल रा जो परिवार है वना ने 70% तक अपने अणमें सब्सिडी मिले है। और कवरेज की जटे बात करा तो बीमारियों दुर्घटनाओं बाढ़ों या बिजली गिरवाऊँ या प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपने कणा भी ढांडा चौपारी मृत्यु हुई जा तो बजार मूल्य रे बराबर वनाने मुआवजो मिले है सर।
1: और देखो व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति बीमारी बात करा तो फसल है पशुधन रे अलावा किसान रा वा खेत रा संबंधित जितना भी यंत्र है वनडो भी बीमा अणि में कीधो जावे सा। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमारी बात करा तो दुर्घटना रे कारण विकलांगता भी जावे पर या प्रचय मृत्यु वेवा पर किसान ने अपने परिवार वाला ने भी वित्तीय सहायता अणि में मिले है सा। और अंडे अलावा और भी बात कर रहा हाँ कि यो जो आस्ती बीमा हाँ तो अंडे तहत भी किसान अपने कृषि उपकरण है जिससे कि ट्रैक्टर है पंप सेट है थ्रेशर रो बीमो है ये भी अंडे में वे करवा सके ऐसा।
0: हाँ बिल्कुल सा। और ये जो अपने खेता में जी यंत्र काम आवे भी बहुत महंगा वे तो आना रो बीमो वेनो भी जरूरी है। देखो फसल रो बीमो भी वेवे और पशुधन रो भी वेवे और खुद रो भी वेवे और यंत्र रो भी वेवे तो वणियो कही है कि किसान निश्चिंत वही जाए कि मारे कोई भी जोखिम वेगा तो मारे पैयो मिल जाएगा सा। तो अब आपको तो अपने किसान भाई ने हुणावा राजस्थानी की
1: बिल्कुल सुनावा सर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: टूटे पाजोड़ा रिलोम हुणियो यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत और लारे लारे हुणियो संदेश। और अभी आपने किसान भाइयों ने सबने जानकारी देवा कि अबार तो पहले आपी जानकारी दी थी कि किसानों ने वाते कई बीमारी योजनाएं हैं, लेकिन अबे आपी जानकारी देवा कि आदिवासी क्षेत्र में जी लोग बाग रेवे है, जी गांव है, जी जातियां जनजातियां हैं, वड़ाने वाते सरकार कई कई योजनाएं बनाई रखी है।
3: बिल्कुल सा सही बात करी सा। और देखो आदिवासी जो कि अपने जनजाति है, वनारे क्षेत्र में विकास रे वास्ते केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा घनी हरी महत्वपूर्ण योजना चलाई है। और योजना रो जो मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करा तो देखो उनमें शिक्षा है, स्वरोजगार है, या पची बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा ने मजबूत करना है सा।
2: बिल्कुल सा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है। और योजना में आदिवासी गाँव में बुनियादी सुविधा, स्वच्छ पानी, बिजली, पक्का मकान, सड़कारो विकास करनो है, जो कि बड़ा बजट रे लारे आपने सरकार चलाई रही है। और अन्नो जो उद्देश्य है वो जनजाति री जितनी भी बस्तियां है,
3: हाँ।
2: यानी कि जी आदिवासी क्षेत्र में जितनी भी बस्तियां है, हाँ। वना ने मुख्य धाराओ जोड़नो है सर।
3: और देखो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की बात करा तो देखो अणी योजना के तहत अधिक आदिवासी आबादी वाला जितना भी गांव है वटे आप चयन कर आदर्श ग्राम रे रूप में विकसित करना है, जटे सभी प्रकार जितना भी मूलभूत सुविधा है वह भी उन्होंने उपलब्ध करवानी है सर।
2: बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी एक अच्छी योजना है। और विशेष रूप उनमें कहिए कि कमजोर और पिछड़ा जी जनजातीय समूह है,
3: हाँ।
2: वनारे आर्थिक और सामाजिक सुधार रे वास्ते या योजना चलाई जा रही है,
3: हाँ।
2: और यह जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है। और एक और योजना है प्रधानमंत्री वन धन योजना,
3: हाँ,
2: यानी कि जंगला में रेवा वाला जितना भी आदिवासी है,
3: हाँ।
2: वनारे वास्ते वन रीजा जितनी भी उपज वे है नी सा, कि जंगलात में जितना भी जंगल है आपने आदिवासी ठेठ इलाका है जटे की आप ही नहीं पहुंच सका, तो वनारी उपज है जैसे महुआ है, शहद है, जड़ी बूटिया है,
3: हाँ।
2: वनारो लाइन वनारो मूल्य संवर्धन करनो,
3: अच्छा।
2: याली वनारो मूल्य बनानो,
3: हाँ।
2: शहद है तो शहद एकदम काढ़ी नीन पाचो बने प्रोसेस करी शहद ने पचे बेचनो, जैसे जड़ी बूटिया है तो वनारी दवाया वनाई ने हटे बेचनी, जैसे महुआ है तो वनारो वनाई दवाया वनाई बेचनी। और इस तरीके आपने आप होली पे देखे हुए तो केसुलारा फूल आवे,
3: बिल्कुल,
2: तो वनारी हर्बल गुलाल बने, तो वह भी आप होली पे देखा के खूब बिके, तो अणी तरीके वनारो

0: परिवर्तित करीने वना ने बेचो जावे ताकि अपना आदिवासी इलाका रा जी लोग है वना ने अच्छी आमदनी वेच सके सा।
1: और देखो अंडेला लखपति दीदी योजना की बात करा तो देखो आदिवासी जो क्षेत्र है वटे स्वयं सहायता समूह रे कौशल प्रशिक्षण दे वना ने सालाना आय 1,00,000 रे ऊपर करनो है सा। और वन अधिकार अधिनियम की बात करा तो जंगला में पीड़िया जितना भी रह रहा है वना आदिवासी ने परिवारी भूमि है वन पट्टो भी देनो है सा।
0: और एक है पालनहार योजना के आदिवासी इलाका में जी भी बच्चा अनाथ वेजा या विशेष परिस्थिति में जना बच्चा रो कोई भी पालन पोषण करवा वाला नहीं है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार अगर वनारो पालन पोषण करे तो वना ने सरकार से वनारी शिक्षा रे वाते और वनारे भरण पोषण रे वाते मासिक आर्थिक सहायता वनी व्यक्ति ने देवे है सा।
1: बिल्कुल सा। और हाथे हाथे मुख्यमंत्री आपा आयुष्मान योजना की बात करा तो देखो वनी में आदिवासी बहुमूल्य जितना भी क्षेत्र वन में स्वास्थ्य है केंद्र खोलनो है या पे कैशलेस जितना भी इलाज है वनी सुविधा भी वनी में देनो है सा।
0: और देखो अन्य अलावा और भी अच्छी सुविधा यह है कि जितना भी बाल बच्चा है आदिवासी इलाका रहा वनारी शिक्षा और छात्रवृत्ति री भी योजना है सा। एक है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जन में मतलब रेणो भी बटेस भरनो भी बटेस यानी कि 6 कक्षा 6 और 12 तक रे जो भी स्कूल है वना में वटेस रेणो है बच्चा ने और वटेस खानो है वनारी किताबारो भणई पढ़ई वनारे जो जहाँ भी ड्रेस रेवे वो सब बटूस मिले सा।
1: बिल्कुल सा।
0: और अन्य अलावा स्कूल और कॉलेज री जो पढ़ाई करी रहा जी बच्चा वड़ा ने वित्तीय सहायता भी मिले और बच्चा और भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे कि जैसे डॉक्टर बनना चाहे इंजीनियर बनना चाहे यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो वड़ा ने विशेष आर्थिक सहायता दी जावे। और देश रा प्रतिष्ठित संस्थान है या पचे विदेश में भी जानो चाहे तो वना ने भी सरकार सुविधा दे रही है सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो आप अपने किसान भाई ने इतनी बढ़िया जानकारी दी कि आदिवासी क्षेत्र में भी घनी हारी ऐसी योजना है जो अपना आदिवासी भाई बहन चाहे तो उन्हें लाभ उठाई सके है सा।
0: बिल्कुल सा।
1: और अभी को तो अपने किसान भाई ने एक और बढ़िया राजस्थानी लोग सुनी दा सा।
0: बिल्कुल सा।

किसान भाई अभी सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और रक्षा सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत की 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री DK शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल रहते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांघिला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर विचार किया गया। सिचुएशन रूम में हुई यह बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1,125 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के साथ।

0: झीलों की नगरी उदयपुर में ढलती हुई इस शाम, इस खूबसूरत शाम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है कुछ सुकून, कुछ जानकारी और ढेर सारी दिलचस्प बातों का। मैं हूँ आपकी होस्ट वंदना।
1: और मैं हूँ गीतांजलि। स्वागत कर रहे हैं आपका अपने मनपसंद शो युववाणी में। अगले कुछ पलों तक हम आपके साथ लेकर आए हैं खबरों, प्रेरणादायक कहानियों, इतिहास, खेल और मनोरंजन का एक शानदार गुलदस्ता।
0: आज के इस खास सफर में चलेंगे गुजरात की ओर और जानेंगे सूरत, जूनागढ़ और गांधीनगर की कुछ रोचक बातें। साथ ही बात करेंगे युवा शक्ति की, जो अपने हुनर और हौसलों से नई पहचान बना रही है।
1: देश के विकास की दिशा तय करने वाले वधावन पोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर भी होगी खास चर्चा। खेल जगत से लेकर कला और सिनेमा की दुनिया तक कल दिलचस्प पड़ाव आपका इंतजार कर रहे हैं।
0: और शो के आखिर में होंगे आज के इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने, साथ ही स्पोर्ट्स के ताज़ा अपडेट्स।
1: तो चाय की चुस्कियों के साथ या सफर के

0: दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे गुजरात के तीन बेहद खास शहर सूरत, जूनागढ़ और गांधीनगर की यात्रा पर। जानेंगे इनका इतिहास, संस्कृति, यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और लाजवाब खान पान के बारे में।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं सूरत की। सूरत को अक्सर डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश हीरे यहीं तराशे जाते हैं। इसके अलावा ये भारत का एक बड़ा टेक्सटाइल हब भी बन चुका है।
0: बिल्कुल वंदना, लेकिन सूरत की कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। 16th और 17th सेंचुरी में यह भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अंग्रेज़, डच और पुर्तगाली व्यापारी यहीं से भारत में अपने व्यापार का विस्तार करते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने शुरुआती व्यापारिक केंद्रों में सूरत को प्रमुख स्थान दिया था।
1: और अगर घूमने की बात करें तो डुमस बीच सबसे पहले याद आता है। समुद्र किनारे की ठंडी हवाएं और काली रेत इसे खास बनाती है। इसके अलावा सूरत कैसल, साइंस सेंटर, अंबिका निकेतन मंदिर और तापी रिवर फ्रंट, ये भी पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं।
0: अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके लिए सूरत पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा मशहूर है, खाना। यहाँ का लोचो, सेव खमणी, सूरती घारी, उंधी और खासा लोगों की पहली पसंद है।
1: और सूरत के बारे में एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो ये है कि सूरत नु जमन अने काशी नु मरण, यानी जीवन में एक बार सूरत का खाना और काशी का दर्शन ज़रूर करना चाहिए।
0: तो वंदना, अब चलते हैं गुजरात के इतिहास और विरासत से भरपूर शहर जूनागढ़ की ओर। जूनागढ़ का अर्थ ही होता है पुराना किला। यह शहर लगभग 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है।
1: सही कहा, जूनागढ़ एक इतिहास मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश और चूड़ा समा राजपूतों और बाद में नवाबों के शासन से जुड़ा रहा है। यहाँ आज भी कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद है जो इसके गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती है।
0: यहाँ का ऊपरकोट किला लगभग 2300 साल पुराना माना जाता है। इसके विशाल द्वार, प्राचीन बावड़ी और मजबूत दीवारें इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती हैं।
1: इसके अलावा महावत मकबरा अपनी अद्भुत इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अशोक के शिलालेख हमें सम्राट अशोक के शासनकाल की झलक दिखाते हैं।
0: और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो जूनागढ़ आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ स्थित गिरनार पर्वत धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हजारों श्रद्धालु हर साल इसकी सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिरों के दर्शन करना आते हैं।
1: और यही नहीं गीतांजलि, जूनागढ़ गिर राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जो कि एशियाई शहरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है।
0: अब बात करते हैं यहाँ के स्वाद की। जूनागढ़ की काठियावाड़ी थाली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें बाजरे की रोटी, रिंगणों, ओलो ओलो, लसनिया, बटाका, खिचड़ी और छाछ का अनोखा स्वाद मिलता है।
1: यहाँ का भोजन सादगी और देसी स्वाद का बेहतरीन उदाहरण है, जो हर पर्यटक को अपनी ओर खींच ही लाता है।
0: वंदना, पहुँचते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया था।
1: गांधीनगर की सबसे बड़ी खासियत जो है, वह है इसका सुनियोजित निर्माण। इसे भारत के सबसे व्यवस्थित और हरित शहरों में गिना जाता है। यहाँ चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली है और शांत वातावरण, सभी कुछ देखने को मिलता है।
0: गांधीनगर का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है अक्षरधाम मंदिर। इसकी भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रदर्शनी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
1: इसके अलावा इंद्रोड़ा नेचर पार्क भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ डायनासोर जीवाश्मों की प्रदर्शनी देखने को मिलती है, यानी डायनासोर के फॉसिल्स, साथ ही वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जानकारियाँ भी मिलती है। इसे कई लोग भारत का जुरासिक पार्क कहते हैं।
0: गांधी नगर में कई सुंदर उद्यान भी है, जिसमें सरिता उद्यान और पुनीत वन प्रमुख है। यहाँ का शांत वातावरण

0: परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन है।
1: खान पान की बात करें तो यहाँ पारंपरिक गुजराती थाली के साथ साथ आधुनिक कैफेज और संस्कृति भी देखने को मिलती है। ढोकला, खांडवी, थेपला और फाफड़ा जलेबी यहाँ के लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल हैं।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सूरत हमें स्वाद और व्यापार की दुनिया से परिचित कराता है, जूनागढ़ इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जबकि गांधीनगर आधुनिकता, संस्कृति और शांति का खूबसूरत उदाहरण है।
1: तो अगर आप गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन तीनों शहरों को अपनी सूची में ज़रूर शामिल कीजिए। हर शहर अपने भीतर एक नई कहानी और नया अनुभव समेटे हुए है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अभी हमने

0: करी शहरों की बात, और अब आपको ले चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, आज का युवा। वंदना, आज हम जिस पहले युवा की बात कर रहे हैं उसकी कहानी सिर्फ एक उपलब्धि की नहीं बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता की भी है। हम बात कर रहे हैं हेमन बेकेले की।
1: बिल्कुल, हेमन का जन्म इथोपिया में हुआ था। जब वो छोटे थे तब उन्होंने अपने देश में कई लोगों को तेज़ धूप में काम करते देखा। इन लोगों को त्वचा संबंधी समस्याओं और स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, और यही बात उनके मन में घर कर गई।
0: और यहीं से शुरू हुई उनकी सोच। उन्होंने सवाल पूछा, क्या कैंसर के इलाज को सस्ता और सभी के लिए उपलब्ध बनाया जा सकता है?
1: और इसी सोच के साथ सिर्फ 14 साल की उम्र में हेमन ने एक ऐसे मेडिकेटेड सोप का विचार विकसित किया जिसमें ऐसी दवाओं का उपयोग करने की कल्पना की गई जो स्किन कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है। उनका उद्देश्य था कि महंगे इलाज की जगह एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जिसे आम लोग आसानी से खरीद सकें।
0: इस विचार ने वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया और 2023 में उन्होंने 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीत लिया। यह अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित युवा विज्ञान प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है।
1: इस जीत के साथ उन्हें $25,000 का पुरस्कार राशि भी मिला और साथ ही अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट का खिताब भी मिला।
0: लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 में दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीन टाइम ने उन्हें किड ऑफ द ईयर चुना। यह सम्मान उन बच्चों को दिया जाता जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
1: और सबसे खास बात यह है कि हेमन का लक्ष्य सिर्फ एक अवार्ड जीतना नहीं है, उनका सपना है कि भविष्य में उनका शोध वास्तविक इलाज का रूप ले और विकासशील देशों में रहने वाले लाखों लोगों को सस्ता उपचार भी मिल सके।
0: मतलब वंदना, हेमन समय सिखाते हैं कि विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे युवा इनोवेटर की जिनकी प्रतिभा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बात करते हैं अर्श शाह दिलबागी की।
0: अर्श का जन्म भारत में हुआ और बचपन से ही उन्हें विज्ञान, रोबोटिक्स और नई तकनीकों में गहरी रुचि थी। लेकिन उन्हें असली प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण बोल नहीं पाते।
1: उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या तकनीक की मदद से इन लोगों को संवाद करने में सहायता दी जा सकती है।
0: और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने टॉक असिस्टिंग लिंग्विस्टिक किट नाम का उपकरण बनाया।
1: यह डिवाइस व्यक्ति की सांसों के पैटर्न को पहचानता है। जो लोग बोल नहीं सकते लेकिन सांस छोड़ सकते हैं, वे अलग अलग प्रकार की सांसों के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। ये डिवाइस उन संकेतों को शब्दों और सेंटेंसेस में बदल देती है।
0: इस तकनीक ने विशेष रूप से ALS, पैरालिसिस और अन्य गंभीर स्थिति से जूझ रहे लोगों के लिए नई उम्मीद पैदा की।
1: उनके इस आविष्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। साथ ही 2014 में उन्हें गूगल साइंस फेयर वोटर्स चॉइस अवार्ड भी मिला।
0: वंदना, इतना ही नहीं, उन्हें इंटेल इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी सम्मान मिला और दुनिया भर के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने उनके काम की प्रशंसा की।
1: अर्श सिर्फ एक आविष्कारक नहीं है, उन्होंने रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी कई प्रयोग किए। उनका विकसित किया गया रोबोटिक डॉग क्लम्जी काफ़ी चर्चित रहा और उसे राष्ट्रपति भवन की साइंस एंड इनोवेशन गैलरी में भी प्रदर्शित किया गया।
0: कम उम्र में उन्होंने टेडेक्स जैसे मंच पर अपने विचार साझा किए और हजारों युवा को नवाचार की दिशा में प्रेरित किया।
1: अर्श की कहानी बताती है कि तकनीक तब सबसे शक्तिशाली बनती है जब उसका उद्देश्य किसी की ज़िंदगी आसान बनाना हो।
0: एक तरफ हेमन बेकेले हैं जो कैंसर के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने का सपना देख रहे हैं,
1: और दूसरी तरफ अर्श दिलबागी हैं जिन्होंने उन लोगों को आवाज़ देने का प्रयास किया जो बोल नहीं सकते।
0: दो अलग देश, दो अलग कहानियाँ, लेकिन एक समान सोच। समस्याओं को देखकर शिकायत नहीं बल्कि समाधान खोजना।
1: और शायद यही आज के युवा की असली ताकत है, बड़ी सोच, नई तकनीक और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा।

0: चेहरे जिन्होंने अपनी सोच और नवाचार से दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करी।
1: बिल्कुल वंदना, और जब युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो देश भी बड़े सपने देखने लगता है।
0: सही कहा गीतांजलि, और देश के इन्हीं बड़े सपनों को हकीकत में बदलते हैं विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति देते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए अवसर भी पैदा करते हैं।
1: दोस्तों, तो वक्त है हमारे अगले खास सेगमेंट का।
0: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी समुद्री प्रोजेक्ट्स में से एक वधावन पोर्ट की, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में तेजी से आकार ले रहा है।
1: वधावन पोर्ट एक ग्रीन फील्ड डीप वाटर पोर्ट है, यानी इसे बिल्कुल नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। करीब 76,220 करोड़ की लागत यह प्रोजेक्ट भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा और पूरा होने पर देश का सबसे बड़ा डीप वाटर पोर्ट भी माना जाएगा।
0: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोर्ट समुद्र में बनाई जा रही एक कृत्रिम ऑफशोर द्वीप यानी आर्टिफिशियल ऑफशोर आइलैंड पर विकसित किया जा रहा है। भारत में स्तर पर का यह पहला प्रोजेक्ट होगा।
1: यह परियोजना महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन पॉइंट पर बन रही है, जो मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है।
0: और अगर इसके आकार और क्षमता की बात करें तो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सालाना 230 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग क्षमता है, उसी के साथ लगभग 23.2 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर क्षमता है, और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े 25,000 TEU वाले मेगा कंटेनर जहाज़ों को संभालने की भी क्षमता है।
1: मतलब भविष्य में जो सबसे बड़े कार्गो जहाज़ दुनिया के समुद्री मार्ग पर चलेंगे वे सीधे वधावन पोर्ट पर आ सकेंगे।
0: वधावन पोर्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसका 20 मीटर का प्राकृतिक समुद्री ड्राफ्ट।
1: आसान भाषा में कहें तो समुद्र की गहराई पहले से ही इतनी अधिक है कि बड़े जहाज को लाने के लिए बार बार ड्रेजिंग यानी समुद्र की खुदाई की जरूरत बहुत कम पड़ेगी।
0: इससे संचलन लागत कम होगी और पोर्ट की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ेगी।
1: यह प्रोजेक्ट सिर्फ समुद्री व्यापार तक सीमित नहीं है, इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना है।
0: इसका मतलब है कि बंदरगाह पर आने वाले सामान तेजी से उत्तर भारत और मध्य भारत के इंडस्ट्रियल क्षेत्र तक पहुंचेंगे। इससे जो लॉजिस्टिक लागत है वो कम होगी और व्यापार को बड़ा फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, किसी भी मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार पर पड़ता है
0: और वधावन पोर्ट भी इसमें पीछे नहीं है। अनुमान है कि यह परियोजना 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली है और साथ ही लगभग 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा कर सकती है।
1: मतलब यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि यह पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है।
0: और इस परियोजना का विकास वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी VPPL कर रही है।
1: VPPL जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड के बीच एक संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर है।
0: परियोजना को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहला फेज़ होगा जो वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है और दूसरा फेज़ जो है वो वर्ष 2040 तक पूरा करने की संभावना है।
1: मतलब आने वाले दशक में भारत के समुद्री व्यापार का नक्शा काफ़ी हद तक बदल सकता है।
0: लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह वधावन पोर्ट के साथ भी कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जुड़े हैं।
1: यह परियोजना दहानू क्षेत्र में बन रही है, जिसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।
0: पोर्ट निर्माण के लगभग 1,44,000 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र को पुनः लैंड रिक्लेमेशन किया जा रहा है और करीब 10.14 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बनाया जा रहा है।
1: स्थानीय मछुआरा समुदाय और किसान संगठन चिंता जता रहे हैं कि इससे उनके पारंपरिक रोजगार और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा।
0: वहीं सरकार और परियोजना प्रबंधन का कहना है कि आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ विकास और संरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी की जा रही है।
1: तो मतलब कुल मिलाकर वधावन पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है।
0: एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को वैश्विक शिपिंग नेटवर्क में और भी मजबूत स्थान दिला सकता है, लाखों रोजगार भी पैदा कर सकता है और देश की लॉजिस्टिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है।
1: लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि विकास के इस सफ़र में पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को चिंताओं को भी गंभीरता से सुना जाए
0: और यही संतुलन किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की असली सफलता तय करता है।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे लेजेंड की जिनकी कॉमेडी टाइमिंग, एक्टिंग वर्सेलिटी और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने हर जनरेशन का दिल जीता है। द वन एंड ओनली परेश रावल। दोस्तों, परेश रावल का जन्म 30 मई 1955 को बॉम्बे में हुआ। कॉलेज डेज से ही थिएटर उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया और यही एक्सपीरियंस बाद में उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना।
1: बॉलीवुड में एंट्री इतनी ईजी नहीं थी। इनिशियली उन्हें मोस्टली सपोर्टिंग या फिर मिलन रोल्स मिलते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और लोगों ने उनके एक्सप्रेशंस और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल को नोटिस किया। यूथ के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: वंदना एक एक्टर जो कॉमेडी भी कर सकता है, विलेन भी और इमोशनल फादर भी और पॉलिटिकल लीडर भी, वो ट्रूली वर्सेटाइल होता है और परेश रावल पर्सनैलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने 1980s और 90s में कई नेगेटिव रोल किए। मूवीज़ में उनका विलेन अवतार सच में लोगों को डरा देता था, लेकिन फिर आई उनकी कॉमेडी और हिस्ट्री क्रिएट हो गई। वंदना, अगर मैं बोलूँ उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले, तो तुम्हारे माइंड में कौन आता है?
1: एग्जैक्टली, मेरे माइंड में आता है बाबूराव। मूवी हेरा फेरी में परेश रावल की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, कन्फ्यूजन, इनोसेंस, सब कुछ लेजेंडरी था। गीतांजलि, तुम्हें पता है कॉमेडी करना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट

0: फेवरेट होनी चाहिए, और परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग तो नेक्स्ट लेवल है ही।
1: लेकिन दोस्तों, अगर आप उन्हें सिर्फ कॉमेडियन समझते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मूवीज़ जैसे OMG, सर सरदार, टेबल नंबर 21, तमन्ना में उन्होंने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दिए हैं।
0: परेश रावल ने अपनी अमेजिंग एक्टिंग और वर्सिटैलिटी के लिए बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो उन्हें 1994 में मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, साथ ही पद्मश्री जो उन्हें 2014 में नवाजा गया, उसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल्स 1994, उसके अलावा बेस्ट कॉमिक एक्टर इन 2001 एंड 2003, साथ ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा 2018 में राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
1: तो वंदना, आज के यूथ को परेश रावल से क्या सीखना चाहिए?
0: बेसिकली वो यही सिखाते हैं कि कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, हार्डवर्क करते रहना चाहिए, और साथ ही अपनी ओरिजिनैलिटी को कभी खोना नहीं चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एज सिर्फ एक नंबर है।
1: दोस्तों, लाइफ में कभी भी अपने ड्रीम्स को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि हर जर्नी एक स्मॉल स्टेप और सेल्फ बिलीफ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, वो बात करेंगे कि ऐसे फिल्म मेकर, राइटर और क्रिएटिव जीनियस की जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इमोशंस, सेंसिटिविटी और रियलिटी का एक नया रूप दिया, द लेजेंडरी रितु पर्णो घोष।
0: बचपन से ही उनका इंटरेस्ट लिटरेचर, आर्ट और स्टोरी टेलिंग में था। उनके फादर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, इसलिए क्रिएटिविटी उनके एनवायरमेंट का नेचुरल पार्ट थी। ऋतुप्रांतो ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, लेकिन उनका हार्ट हमेशा क्रिएटिव वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होता था। करियर की शुरुआत उन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से की, और वहीं से उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई।
1: 1990s में जब कमर्शियल सिनेमा एक्शन और मसाला मूवीज से भरा हुआ था, तब रितु पर्णो घोष ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग को एक फ्रेश आइडेंटिटी दी। उनकी अर्ली फिल्म्स जैसे 19 अप्रैल, दहन, बरी वाली ने ऑडियंस को डीपली टच किया। उनकी मूवीज़ में लाउड ड्रामा कम और रियल इमोशंस ज़्यादा होते थे। रिलेशनशिप को इतनी ऑनेस्टी पोर्ट्रे करना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी।
0: तो गीतांजलि, अगर हम रितु पर्णो घोष की फिल्म मेकिंग स्टाइल की बात करें तो उनकी फिल्म्स पोएट्री जैसी फील होती थी। उन्होंने स्पेशली वेमेन कैरेक्टर्स को बहुत डेप्थ के साथ प्रेजेंट किया। सोसाइटी के प्रेशर्स, लोनलीनेस, इमोशनल स्ट्रगल्स, सब कुछ उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली शो किए।
1: और सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं दोस्तों, उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी के टॉपिक्स पर भी ओपनली बात की। उस टाइम पर जब सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी, तब उनका अपनी आइडेंटिटी को लेकर कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना बहुत इंस्पायरिंग था।
0: उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्म्स जो आज भी सिनेमा लवर्स के हार्ट में स्पेशल प्लेस रखती हैं, वो है चोखेर बाली, रेनकोट, द लास्ट लेयर एंड शोब चिरतो काल्पनिक।
1: रितु पर्णो घोष को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स मिले। उन्होंने 12 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, जो किसी भी फिल्म मेकर के लिए बहुत ह्यूज अचीवमेंट है। इंडियन सिनेमा में उनका कंट्रीब्यूशन इतना इम्पैक्टफुल था कि आज भी उन्हें वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर्स माना जाता है। 30 मई 2013 को रितु पर्णो घोष ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
0: और परेश रावल की तरह रितु पर्णो घोष भी हमें यही सिखाते हैं कि अपनी ओरिजिनैलिटी को कभी नहीं खोना चाहिए, साथ ही क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यही गीतांजलि इंस्पायरिंग स्टोरी थी रितु पर्णो घोष की, एक फिल्म मेकर, एक राइटर, एक विजनरी और एक फियरलेस पर्सनैलिटी। उनका सिनेमा हमें सिर्फ स्टोरीज नहीं देता, बल्कि ह्यूमैनिटी को समझने का एक डीपर पर्सपेक्टिव देता है।

0: दोस्तों, बात करेंगे ऐसे फुटबॉल आइकन की जिनके पैशन, लीडरशिप और लॉयल्टी ने दुनिया भर के यंगस्टर्स को इंस्पायर किया है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल पर्सनालिटी है द लेजेंडरी फुटबॉलर स्टीवन गेरार्ड।
1: स्टीवन गेरार्ड का जन्म 30 मई 1980 को इंग्लैंड में हुआ। बचपन से ही उन्हें फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। छोटी एज में ही उन्होंने लोकल फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया और उनकी टैलेंट को नोटिस किया फेमस क्लब लिवरपूल ने।
0: स्टीवन गेरार्ड सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो एक लीडर थे। मिडफील्ड में उनकी एनर्जी, पासिंग, लॉन्ग शॉट्स और लीडरशिप नेक्स्ट लेवल थी। उन्होंने बहुत बार अपनी टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला। वंदना, कभी कभी लाइफ में भी ऐसा होता है ना, सब कुछ अगेंस्ट लगता है, एग्जाम प्रेशर, करियर कन्फ्यूजन, फेलियर्स, लेकिन रियल चैम्पियंस वही होते हैं जो प्रेशर में और स्ट्रांग बन जाते हैं, और स्टीवन गेरार्ड ने दुनिया को यही सिखाया।
1: बिल्कुल सही कहा गीतांजलि। और अब बात करते हैं उनके फुटबॉल जर्नी के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक की। ईयर था 2005। टूर्नामेंट थी UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 2005। मैच था लिवरपूल वर्सेस मिलान। फर्स्ट हाफ के बाद लिवरपूल

0: 3-0 से पीछे थी। ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन फिर स्टीवन गेरार्ड ने मैच संभाला। उन्होंने एक गोल मारा, टीम को मोटिवेट किया और पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया। दोस्तों, इसलिए स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं होता, यह कॉन्फिडेंस और बिलीफ भी सिखाता है।
1: स्टीवन को उनकी मेहनत और टैलेंट के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। उनके मेजर टीम ऑनर्स से UEFA चैम्पियंस लीग 2004 और 2005 में, UEFA सुपर कप जो 2001 और 2005 में मिला उनको, और एज मैनेजर उन्हें PFA स्कॉटलैंड मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2020 और 2021 में। और इन्होंने कई इंडिविजुअल अवार्ड्स भी जीते, जिसमें कि उनको UEFA क्लब फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2005 में, PFA यंग प्लेयर अवार्ड मिला 2001 में।
0: और आज के लिए उनकी जर्नी से यही इंस्पिरेशन है कि आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में लॉयल्टी रह जाती है। लेकिन स्टीवन गेरार्ड ने ऑलमोस्ट कंप्लीट करियर एक ही क्लब लिवरपूल के साथ रहे। यह हमें सिखाता है कि अपनी रूट्स को वैल्यू करना कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है, और उसके अलावा लीडरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर वही नहीं होता जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे, लीडर वो होता है जो डिफ़िकल्ट टाइम में सबको इंस्पायर करे, और गेरार्ड एग्जैक्टली वैसे ही कैप्टन थे।
1: रिटायरमेंट के बाद भी स्टीवन गेरार्ड फुटबॉल से जुड़े रहे कोच और मैनेजर के रूप में। वो यंगस्टर्स को ट्रेन और मोटिवेट करते रहे। यह दिखाता है कि रियल लेजेंड सिर्फ खुद सक्सेसफुल नहीं बनते, वो दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाते हैं।
0: अब बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिनके सपनों ने इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा दिया। जी हाँ, आज का हमारा अगला इंस्पायरिंग टॉपिक है विल्बर राइट। उन्होंने दुनिया का पहला सक्सेसफुल एयरप्लेन बनाया और एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। बचपन से ही विल्बर बहुत क्यूरियस नेचर के थे। उन्हें मशीन्स और नए इन्वेंशंस में इंटरेस्ट था। यह बचपन में टॉयज को खोलकर देखते थे कि वो कैसे काम करते हैं।
1: और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फादर ने एक बार उन्हें एक छोटा सा फ्लाइंग टॉय हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। उस टॉय ने राइट ब्रदर्स की इमेजिनेशन को विंग्स दे दिए। यंग एज में राइट ब्रदर्स ने एक नए प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट करी, और बाद में उन्होंने बाइसिकल रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी शुरू कर दिया।
0: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बाइसिकल शॉप और एयरप्लेन इन्वेंशन का क्या कनेक्शन है। एक्चुअली बाइसिकल्स ने उन्हें बैलेंस, मैकेनिक्स और मोशंस के कंसेप्ट समझने में हेल्प करी, और यही नॉलेज बाद में एयरप्लेन डिज़ाइन में काम आई। उस टाइम वर्ल्ड में कई साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ह्यूमन फ्लाइट पर एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे थे, लेकिन सक्सेसफुल कंट्रोल्ड फ्लाइट किसी ने अचीव नहीं किया था।
1: विल्बर राइट ने फेमस जर्मन एविएशन पायनियर के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब पायनियर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तब राइट ब्रदर्स को और भी डिटर्मिनेशन हो गया कि वो सेफ और कंट्रोल्ड फ्लाइंग मशीन बनाएंगे।
0: ब्रदर्स ने बुक पढ़ी, रिसर्च की और खुद एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया और समझा कि बर्ड्स अपनी विंग्स को, यानी अपने पंखों को कैसे कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों, सक्सेस की जर्नी कभी इजी नहीं होती। राइट ब्रदर्स को भी बहुत फेलियर्स फेस करने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद वो और ज़्यादा रिसर्च करते थे और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते थे।
1: और फिर वह आया हिस्टोरिक मोमेंट जिसने दुनिया बदल दी। 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक नाम की जगह पर राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला सक्सेसफुल पावर्ड एयरप्लेन फ्लाई किया। ओरीविल राइट ने पहली फ्लाइट ऑपरेट की जो सिर्फ 12 सेकंड्स तक चली और अराउंड 120 फीट डिस्टेंस कवर किया। आज के टाइम में 12 सेकंड्स हमें बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो 12 सेकंड्स हिस्ट्री बन गए।
0: राइट ब्रदर्स के इन्वेंशंस ने ट्रांसपोर्टेशंस की दुनिया कम्प्लीटली चेंज कर दी। एयरप्लेन्स ने टूरिज्म, बिजनेस, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज और ग्लोबल कम्युनिकेशन को रेवोल्यूनाइज कर दिया। विल्बर राइट ने 30 मई 1912 को इस दुनिया को अलविदा कहा था।
1: तो दोस्तों, बात करते हैं कि उनकी लाइफ से हमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत पावरफुल होती है, तो हमें कभी भी क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करना चाहिए। और कोई भी फेलियर किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता, बल्कि वो हर एक नई जर्नी की स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों, यह थी इंस्पायरिंग स्टोरी विल्बर राइट की, जिन्होंने दुनिया को फ्लाइंग का गिफ्ट दिया। उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि क्यूरियोसिटी, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से इंसान आसमान तक पहुँच सकता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। IPL 2026 के दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 214 रन बनाए। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाते हुए टीम को 18 ओवर में 219 तक पहुँचाया और जीत दिलाई। IPL 2026 का फाइनल अब गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 31 मई को खेला जाएगा।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। उदयपुर की शाम भी अब धीरे धीरे और हसीन होती जा रही है। हवा में हल्की ठंडक है, झीलों का शहर अपनी खूबसूरती के पूरे रंग में है। तो अगर अभी तक आप भी घर बैठे हैं तो ज़रा निकल पड़िए, अपनों का हाथ थामिए और पहुंच जाइए फतेह सागर लेक की पाल पर। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चाय का मज़ा लीजिए, या फिर ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी के साथ इस खूबसूरत मौसम को महसूस कीजिए।
1: मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और याद रखिए, ज़िंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल अपने लिए भी चुराना ज़रूरी है। आज मैं थी आपकी रेडियो दोस्त गीताजली और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थी वंदना। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर। यही आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें

0: जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में दिल से फिल्म का गीत, संगीत था ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ये फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, और वहीं से 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी, और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन बीच की धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

0: साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। व्यास नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया।

0: महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज वन के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे

आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आमजन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौरवासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री विश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110

0: बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आमजन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारतीय फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगरपालिका कर्मचारियां ने सरकार जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली सरहदी हलका माय रेत रात तूफान उस जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणेरा खड़कवासलारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माय 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माय बोल रहा है। ये मौके जनरल द्विवेदी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीनो है। वह कहो कि वो अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवण वाला कैडेटाओं व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखण बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटा री सराहना करता थका कहो कि हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशा रा 21 कैडेटा ने ही डिग्री दीरी जी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेता किसाना और गांवा ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावण बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माय खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारा माय राखी जी मीटिंग माय बोल रहा है। वह कहो कि ई अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवण किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवण और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवा री जनता ताई सीधो पुगावणो है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माय चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इनरो प्रसारण AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री रा दफ्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप माथे ही करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश माय चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब और साफ गोई सागे कराया जावे है। वे आज नई दिल्ली माय निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलां रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन माय बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो के लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपख तरीकाओं वोट देवण तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात करया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून नू काम करन लगेला। विद्यार्थियों री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावण री साफ प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो।

0: जा रहे है। जयपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तहत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावन सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कानियों मेलर 1 जून खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा आ शिविरा में पात्र लोगों ने कर्ज री दूजी किस्त दी जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माए काम करन वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावन रा काम माए खास कड़ी बताया है। वह आज जयपुर माए राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन माए बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगर पालिका कर्मचारियों रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश माए साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दीनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं।
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगला री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9000 अर्जियां मायू 6032 मंजूर कर ली रिची है। अर्जियां मंजूर करन रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2000 अर्जियां मायू 1332 ने मंजूरी दे रिची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियों ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजन रो ऐलान किन्नो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकम रा मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियों रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावण देवण रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश माई नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय माए योगाभ्यास रो कार्यक्रम राखी चियो। इन माए विद्यार्थी, शिक्षक और जनता उमाव सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सोगन लीनी। नागौर कने जोधपुर बीकानेर गेला मथे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट माए आ जावण 4 जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डुकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार में सवार 2 महिलावां और 1 बच्चा समेत 4 जना री मौत वेगी। अरब मौसम, प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहद लागियोड़ा और उत्तराद आतुणी हलका माए आज दोपहर री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिला में आए जोरदार आंधियों दिन माई अंधारों महसूस वेवन लाग्यो। रेत रात तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर माई आर एस आर रा मोटा हल्का माए पसर गयो। माणा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रात तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप और गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर

0: बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गांव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
1: कई थोड़ा 60 हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार हो बायरो बाजो जीणो धुड़ारो गुबार छा जावण रे कारण

0: अरुण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
1: कई ठोड़ा 60 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार और बायरो बाजो जिणो धूलारो गुबार छा जावण रे कारण दूर ताई नजर नी आयो। इन दौरान लोगां ने दिन माए गाड़ियां री लाइटा चासणी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनो कई ठोड़ा रूखड़ा टूट गया और होर्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति में थई असर पड़ियो। राजधानी जयपुर में आई संजानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश हो पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़ बार आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन, जोरदार बायरो बाजण और बिजली चमकण री बगत सावचेती राखण सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावण, स्टेशन में दाखिल वेवण और बाहर जावण रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावण, गाड़ियां उभीकरण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी चिया, जा माथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगई वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीन आई लगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन ही धूलो उड़वा सागे आंधी चाली, सरहदी हलका माय रेत रा तूफान और जिंदगी माथे असर पड़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर

0: राम राम मेरा भाई।
1: राम राम नीमा भाई साहब, राम राम।
0: और अपने चौपाल रे माते आया था का सब किसान भाई और बहना ने अपनो
1: राम
0: राम राम
1: राम
0: सा।
1: साहब।
0: अपनो कार्यक्रम नो टेम भी नापी भी आ गया, ये लोग भी आ गया है। तो देखो सा, आज आपकी जानकारी देवा कि जो अपना ढांडा चोपा जी ग्याबण में वे वनारो अपने देखभाल किस तरह करनी है, क्योंकि अगर वनारी देखभाल आपी टेम और बढ़िया करांगा तो अपने जो विवाह वालों जो वनारे बच्चों है वो भी स्वस्थ रहेगा और ब्यात में दूध भी बढ़िया आएगा। और यो जो टाइम है गर्भावस्था रो टाइम बनारो, तो वहीं पे आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भावस्था रे आखिरी 3 महीना में जो बच्चों पली रो वे वो बहुत ही अंडे बाद बहुत ही तेजी बढ़े, तो और अर्थे उन्नाला रे दन्ना में भी बनारो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है सा।
1: बिल्कुल सही बात की सा। देखो, सबू पहली बात एक संतुलित आहार और अतिरिक्त आहार, यानी कि गर्भावस्था रे आखिरी 3 महीने महीने जो अपन आप बात बताई कि जो गर्भ पल रहे हो वरने अतिरिक्त दाणो, यानी कि नियमित चारा रे अलावा पशु ने रोजाना 2 लगिन 2.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाणो यानी कि पशु आहार देना शुरू करना चाहे।
0: बिल्कुल
1: हरा चारा और सूखा चारा की बात करा तो पशु ने पर्याप्त मात्रा में साफ और सुपाच्य और सूखो चारो देनो। ध्यान यो रखनो चारो फपूंद लागियो थको और बिल्कुल सड़ियो थको नहीं बैसा।
0: और अन्य लारे लारे देखो अपने भेरा भी वनाने आना रे मायने खनिज मिश्रण भी देना चाहे, जिनमें पशु रे दाना में 50 से 60 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण, लगभग 30 ग्राम साधारण नमक जरूर मिलावा, ताकि यो कई वे कि जो गर्भस्थ शिशु वे बना रहे वन्य हड्डिया रे बात है बहुत ही बढ़िया रहे, वनो विकास बहुत ही बढ़िया वे और अपने वनने बाद दूध भी बहुत अच्छो आवे बना ठंडा रहे, और बनाने जो बुखार

0: है वो नी वेवे और हमारी हड्डियां भी कमजोर नी वेवे सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो कि एक दूजी बात क्या ध्यान रखनी कि भाई रेवरो स्थान और जो अनारो आराम अणी मात्रो भी ध्यान रखनो, अलग
0: हाँ
1: स्थान वेणो चाहे गर्भावस्था महीने कही आप देखो 7वां 8वां महीना रे केड़े कही गर्भवती पशु ने अन्य पशु अलग बांधनो चाहे ताकि वे कही आपस में लड़ने एक दूसरे ने चोट नहीं पहुँचावे।
0: बिल्कुल
1: अभी देखो कि यो भी ध्यान रखनो फिसलन रहित फर्श यानी कि असी फर्श वेणी चाहे कि भाई जटे पशु बांधियो थको है वटे फर्श सूखो साफ और फिसलन रहित वेणो चाहे। आप
0: हाँ, ताकि
1: देखो
0: कि रपट नहीं जावे।
1: बिल्कुल सही बात है सर। और
0: बिल्कुल
1: गोबर और पेशाब री तुरंत साफ सफाई करनी ताकि पशु रो पैर नहीं फिसले और फिसलों गर्भपात्रो खतरो नहीं रहे सर।
0: बिल्कुल सर, अने लाने लाने खुली हवा और धूप रोमेणो भी बहुत ही जरूरी है। जटे आपी पशु ने वाड़ा में बांधी रहा अपने ढांडा चोपा ने, तो वटे धूप भी आनी चाहे, हवा भी आनी चाहे, और अने गर्मी में ज़्यादा तावड़ो नहीं लागनो चाहे, क्योंकि सुबह हांज रो तावड़ो लागे तो ठीक है, लेकिन दन रो तावड़ो लागे तो गर्भवती शिशु बहुत ही परेशान में, गर्भवती जो वा ढांडा चोपा वे भी परेशान में। अने लारे लारे जटे बात करा आपी दाणा चर री बात करी, अभी बात करा आप पीवा रे पानी री, तो अपने ग्याबन जी भी पशु है उन्होंने 3-4 बार साफ और बढ़िया पानी बतावनो है उन्होंने 3-4 बार, और यूं नहीं रखनो कि भाई अपने वाड़ा में एक दान प्याऊ भर दी दिन घी हाथ दन री, यूं
1: जी
0: नहीं, अपन छोटी छोटी प्याऊ रखनी, रोज उन्होंने साफ करनी, रोज ताजा पानी भरनो है। ऐसा वन्यू कि अपने जो ग्याबन जी ठंडा चोपा है वहाँ पे असो बुरो प्रभाव नहीं पड़ेगा सा।
1: बिल्कुल सही बात की आप। और देखो कि स्वास्थ्य और बीमारियों बचाव भी वनारो ध्यान रखना, टाइम टाइम पे टीकाकरण करना यानी कि डॉक्टरी सलाह आप यो सुनिश्चित करना कि पशुओं ने खुर पकाओ मुंह पकाओ और गलगुटू जैसी खतरनाक बीमारियां रा टीका सही समय पे लागिया ताकि अणा ने ये बीमारियां नहीं वेवे। कृमि नाशक दवारों भी टाइम रहता था का ध्यान रखना। गर्भ रे आखिरी महीना में डॉक्टर ने पूछने पेट रे कीड़ा मारवारी सुरक्षित दवा जैसे कि या फेंडेडोल जोल है और हर दवा कई गर्भवती पशु रे वाते सुरक्षित नहीं वेवे। अंडे वाते
0: हाँ
1: कही है कि बिना डॉक्टरी सलाह ने कोई दवा अपने वणी दरमियान नहीं देनी है सा।
0: नहीं देना, और अने अलावा जो आपने ग्याबण डांडा चोपा वे वनाने दौड़ावानी यूनिक भाई, अगर दौड़ाई रहा वनाने तावड़ा में बांधी रखिया, वनाने बांधी रखिया तो छोटी की रस्सी बांधी रखिया ताकि वे हरी फरी नहीं सके, असो आपने बहुत ही ज़्यादा सावधानियाँ रखनी है सा। और अने अलावा देखा जिस तरह वनारे प्रसव रो टाइम बढ़े आवे तो वनारे तो आपने हॉस्पिटल बतावनो है वनाने, और टेम टेम पे वनाने बढ़िया गुनगुनो पानी पावनो है, और वनाने सूखो चारो विचा वाते दे देनो, और तुरंत डॉक्टर ने बुलाई लेनो है, और प्रसव वही जा वनने बाद भी वनाने गुनगुनो पानी पानो, अजवाइन और गोल रो काढ़ो वनाई आपने देनो है, जो कि वनारे फायदेमंद वेवे और आपने वाते भी बहुत ही बढ़िया वेवे सा।
1: बिल्कुल सही बात की सा। अणा वातारो आपणे वणी दरमियान पूरो ध्यान राखणो है और बिल्कुल जतरो आप ध्यान रखो वणियों दुगनो
0: दुगुनो राखनो,
1: राखणो
0: दुगुनो
1: है
0: राखनो,
1: सा।
0: और वनारी जो का आहार है वो भी दुगुनो राखनो, क्योंकि वह दो जीव पड़ी रहा है नी सा,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सा
0: दुगुनो आहार दांगा तो आपने जो ढांडा चोपा है भी बढ़िया रहेगा, और अपने ब्याह थे वह भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अबे अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और करा अपने किसानों मनोरंजन, और हुनावा यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो सा अच्छो सो राजस्थानी लोकगीत होना है और लाल लरे विज्ञापन भी होना है। अभी देखो आप सब जाना है कि भाई अपने किसान भाई बहना दिन रात खेतम में काम करे और अपने कार्यक्रम रो एकमात्र उद्देश्य भी यही से कि ये जितनी मेहनत करे अन्य मित्रों अच्छो अच्छो फल मिलना चाहे।
3: बिल्कुल सर, देखो अपने मौसम की जटे बात करा तो मौसम बदल तो रहे। सुबह आप ही उठा भी तो कतरो घना वादला वेरियान वर्का वेरी अबार दन ने देखो तो घणो तपियो। तो जो जो मौसम है अबे तो देखो बदल वालो टेम ही से कनान हवा कसी बाजे तो कई मौसम परिवर्तन वही जा। तो अंडे बात है अपने किसान भाई ने अबे देवा आप मौसम की जानकारी ताकि भी हाव चेत रहे और बनारे खेती बाड़ी में और ढांडा चौपारो ध्यान रखी सके।
2: बिल्कुल सही बात की सर। तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर जो प्राप्त सूचना के आधार पर अगर आप बात बतावा तो आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हवा की गति की बात करें तो 3-8 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेग दक्षिण पश्चिम चालवाल लाला रे अधिकतम तापमान 41-42 और न्यूनतम 25-28 रेवा लाला रे। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो न्यूनतम 27-38 और अधिकतम आप देखो 7-12% रेवा की पूरी पूरी संभावना है।
3: और देखो खेतीबाड़ी की बात करा तो आपने खेता में जो मिट्टी है वनी नमी बनाई रखनी पंक्तियाँ रे बच्चे आपने सूखी जो घास वे या फसल राजी अवशेष वे वनारो उपयोग करनो। और देखो उन्हीं उन्हीं बार हवा चाली रही है तो वन ने बचाव रे बात है आपने खेता रही है जो जे मेड़ वे वन पे आपने विंड ब्रेक स्ट्रिप या जूट री आपने जाली लगाई देनी। और अनाज रो भंडारण रखवा रे बात है आप कह भंडार घर ने अच्छी तरीके साफ करनो और साफ करी पचे हुकई लेनो कूड़ा कचरो वेवे बनाने जब या तो बाड़ी देनो या विने आपने मिट्टी में दबाई देनो। और दाना में 12% नमी ज़्यादा नहीं वेणी चावे और भंडार घर की छत है दीवारा है फर्श है वने एक भाग पे मेला थी 50 EC ने 100 भाग पानी में मिले छिड़काव करनो। और यदि आप ही बोरियाँ या पुरानी ले रहा तो वनाने भी मेला थी में 100 भाग पानी रे गोल में मिले 10 मिनट तक भिंजो ना पाने छाया में हुकई देनी है सा।
2: बिल्कुल सही बात है सा। और अगर आप मूंगरी बात करें तो देखो सिंचाई आनी टाइम जो मूंगरी फसल है फूल आना है यानी फली वनवारी अवस्था में है तो आनी अवस्था में नमी की कमी और पैदावार घट सके। अंडे बात है हल्की हल्की सिंचाई जारी रखनी है और गर्म मौसम में ध्यान रखना हो थ्रिम्स रो प्रकोप बढ़ सके। अंडे बात है नियमित रूप निगरानी करता रहनी चाहिए सा।
3: और कपास की बात करें तो अड़ी हफ्ता में किसान कपास री बुवाई बात है खेत तैयार कर ले और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणिक बीज लेन ही आपने इस्तेमाल करें। और वेलड़ा वाली फसल की बात करा तो अणा में भ्रंग कीट अंकुरित और नई पत्तियां ने खाई जावे और वणियों आपने जो फसल है वनाने आपने बहुत ही ज़्यादा नुकसान वे। तो अंडी रोकथाम रे बात है आपने कार्बेरिल 5% रो चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर सुबह यहाँ जे आपने बुरकाव करना है। और जायद मूंगफली रे जटे बात करा तो खरपतवार रे प्रकोप नियंत्रण करवा रे बात है पेंगिंग रे बात है आपने इंटरकल्चर ऑपरेशन और हाथ गुड़ाई करवा रही जरूरत है सा।
2: बिल्कुल सा। और अगर आप भिंडी की बात करें तो तेज हवा चालवा संभावना ने देखता था किसान भाई बहन ने भिंडी और अन्य सब्जियां री तुड़ाई करवा की सलाह दी गई है ताकि आप देखो संभावित नुकसान वो बचे सका। अब देखो ग्रीष्मकालीन हरो चारा की बात करें तो गर्मी रे मौसम महीने आप देखो हरा चारा री काफ़ी कमी भी जावे। अंडे बात है हरा चारा वाली जैसी फसलें जैन ज्वार बाजरा मक्का लोबिया आदि री बुवाई टेम रेता थका करनी चाहे सा।
3: और देखो अनिन वर्का छांटा रो टेम भी हैन वर्का छाटो तो आज आयो है लेकिन तावड़ो घणो तेज पड़ी रो नो तपो चाली रो है तो आपने घर में जी ढांडा चोपा है वाड़ा में वणारो भी ध्यान राखनो है वणा टेम टेम पे पानी पावनो है तावड़ा में भी वणा ने नी फरावना है और आपने लाड़ला रे आपने वणारो भी ध्यान रखना है था। तो या तो ही मौसम संबंधी जानकारी और अबे आपने किसान भाया ने और बहना ने सुनावा एक और राजस्थानी गीत।
2: बिल्कुल सर।

तो मेरा भाई यो हुणियो आप ही बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और अबे आपने किसान भाया और बहना ने हुणा आया है आपने जो स्टूडियो में डॉक्टर दीपक जैन साहब भी आपने जानकारी देगा कि वर्तमान समय में पौध संरक्षण रो कार्य आप ही किस तरह कर सका। और अणा दीपक जैन साहब बात कर रहा है गजेंद्र सिंह जी राठौर, तो आप ही हुणा सा बातचीत।

0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हांगले किसान श्रोता ने गजन सिंह राठौड़ो राम राम सा देखो श्रोता आप टेम टेम पे नरी काम री बात करा खेती और खेती बाड़ी जुड़ी थी की और अने संबंध में आज आप बात करांगा कि क्योंकि आप मई रो जो महीनो है यो खत्म हुई रो है और जून में आप जो फसला रहा जितना भी अपने काम करना है और पौध संरक्षण का जो काम करना है वही बारे में आप जानकारी दांगा और यह जानकारी देवाते अपने स्टूडियो में पधारा है डॉक्टर दीपक कुमार जी जैन साहब आप कीट वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव रे महीने हैं तो सब पहला कार्यक्रम में आपका स्वागत राम राम साहब
1: राम राम साहब सभी किसान भाई ने भी राम राम
0: तो जैन साहब देखो बात अच्छी है कि आपने जो हो तपीरो अबार तो मई रो महीनों में अपने लगभग लगभग खत्म है और यो अपने जून महीना रहा जो खास काम है अगर यूँ सीधी संक्षिप्त में बात करा तो जून माह में आपने कैसा कैसा कृषि संबंधित और पौध संरक्षण काम आपने करना है वनडे बारे में आप बताओ
1: जी रहा अब आप किसान भैया आप देखोगा जेठ को महीनों चल रहे है ना तो अपनी जेठ रहा महीना में आप देखोगा अगर मूंगफली बोना चाहिए रहा है तो सबसे बढ़िया समय है मूंगफली रो आप अपनी जेठ महीना रे प्रथम सप्ताह में मतलब जून रहा प्रथम सप्ताह में या दूसरा सप्ताह में आप मिट्टी की जाँच कर लो उनके आधार पर आप सबसे पहला तो 250 किलोग्राम जिप्सम आप अपनी में अंतिम जुताई के समय खेत में मले लो मतलब यदि बुआई करिया हो वनडे पहला मले लो तो वनती कही वेगा कि एक तो तेल की मात्रा बढ़ेगा वहीं के बाद आप रहे यानी मिट्टी की जांच रे आधार पे आप 60 किलोग्राम फास्फेट 15 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब 130 किलोग्राम तक आप DAP दे सको या DAP नहीं हुए तो 375 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो यूरिया दे सको बुआई थी पहला एक चीज़ ध्यान रख जो कि अणमें अगर आप बार बार पत्तियाँ पीला पड़वारी समस्या है तो एक हरा कशिश वन्य भी आपने या फेरस सल्फेट है वन्य भी आपने खेत में 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टर मल जो तो वो पत्तियाँ पीला पड़वारी समस्या है वह भी खत्म भी जाएगा और मूंगफली में एक चीज़ जरूर ध्यान रख जो कि जो किस्मारो आप चयन कर जो है वनमें आप एक तो गुच्छा वाली किस्मा हुए और एक फेलवा वाली किस्मा हुए तो फेलवा वाली किस्म में आप मुख्य रूप से प्रताप मूंगफली 1 है प्रताप मूंगफली 3 है और प्रताप राज मूंगफली है अंडे अलावा अगर ये तो जुमकारी किस्म है और फेलवा वाली किस्म की अगर बात करें तो RG 382 जन दुर्गा के नाम से भी जाने M13 है वन्य भी बोई सको और गिरनार 2 भी आप अन्य बोई सको एक चीज़ ध्यान रख जो कि जो जटा तक पौध संरक्षण की बात है तो मूंगफली में आप देखोगा कि थोड़ा दिन बाद वह जो जमीन रे बड़े जो तनो हुए या उन्हीं ने कहे कि कालर रोट एक बीमारी हुई है वनडे बात है आप बीज उपचार जरूर कर जो अणी रे बात है आप 3 ग्राम थायरम ने या 2 ग्राम मेनकोजेब ने प्रति किलो बीज रे हिसाब से आप अपने बीज उपचार कर दीजिए और या कोशिश करो कि अगर अन्य बोईरा हो या पचे आप ट्राइकोडर्मा 8-10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है और राइजोबियम कल्चर जो है वनडा 3 पैकेट प्रति हेक्टर के धरती अन्य मिलाना है और एक चीज़ जरूर ध्यान रखो सफ़ेद लटरी जटे समस्या हुए जन्ना आप गिंडोरो कहाँ वंडी समस्या हुए या उदयरी समस्या हुए तो आप एक काम कर जो 80 किलो बीज में 3 लीटर क्यूनालफास या एमिडाक्लोप्रिट 250 मिलीलीटर मिले ना वंडी बुआई करनी है
0: तो जैन साहब या तो आप बढ़िया बात बताई कि भाई एनी टाइम अपने कई कई काम करना है लेकिन या तो अपने वेगी कि जो जो आप बुआई कर रहा है खेत की तैयारी की तरह करनी लगभग उन्हें संबंधित जानकारी भी लेकिन अणी जून रे महीना में जो आप नरी किसान भाई जो है बागवानी फसला में पे जो काम करना चाह रहा वणा ने आप कई सलाह देना चाहोगा
1: जी बागवानी फसला वाते भी अपन बहुत बढ़िया समय गड्ढा खुदी गया वेगा तो वणा में आप एक ध्यान रख जो कि आम रे महीने 8-10 मीटर की दूरी पर है या आंवला में 6-8 मीटर की दूरी पे है अमरूद में 6-7 मीटर की दूरी पे है पौधा थी पौधा की दूरी बती रहा हूँ वहीं पे आपने लेआउट करना है लेआउट में मतलब यो वे कि अंति शक्ति अणी ने आपने वर्गाकार विधि कहे अणी में शक्ति बढ़िया यो रहेगा कि अब भली आप अणी में ड्रिप थी पानी दे रहा हो या धोरा में भी पानी दे रहा हो तो एक जैसा पौधा लगेगा तो वनडे बीच में भी आप फसल ली सको तो दूरी रो जरूर ध्यान रख जो अगर पपीता रहा बाग लगे रहा हो तो 2x2 मीटर की दूरी पे है नींबू लगे रहा हो तो 5x5 मीटर की दूरी पे आपने वहीं को खेत को लेआउट करना है और ख़ासकर आप देखोगा कि बेर में आप देखो अब नया फूटा नवा लगी है तो वहाँ पे जटे कटाई तक भाग वणा ने कटाई छटाई कर देनी है तो वटे आप बोडेक्स मिक्सचर लगे देना है और नींबू में अब कही हुएगा पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखवा लगेगा तो वणा ने डाईबैग की समस्या के डाईबैग मतलब पौधा ऊपर से नीचे उगेगा तो वणी रे बात है आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वणी ने पहला तो कटी छटी कर दो वटे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पेस्ट भी लगे दो और 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वणी ने आप छिड़काव भी कर सको नींबू में आप देखोगा कि अपन वाला फल पे और पत्ता पे भी धब्बा लगवा लगे वणी ने आप कैंकर बीमारी कहे

0: के आसपास अच्छी हरी तरह की गोबर की खाद दे दीजो। और एक काम और कर सको, जटे आप या फसल लगाई रहा हो वटे आसपास दूसरी फसल जो खासकर दूसरी मर्चा वगैरह अंडे बड़े नहीं हुए हुए या कद्दू वर्गी सब्जियां नहीं हुए नहीं तो वंडा कीड़ा का ही वेगा कारण पे इन्हें आक्रमण जरूर करे। तो यो चीज़ जरूर ध्यान रखियो, जटे आप मिर्ची भी बोई रहा हो तो वटे आसपास कद्दू वर्गी सब्जियां या पपीता नहीं वेगा वेना छावे नहीं तो पचे वो कही के पत्ती मरोड़ रोग जन लीप कर लो बीमारी केवे वह बीमारी अणमें ज़्यादा आगा। और मिर्चा में जटे भी आप रोप लगे रहो खेत में 10-15 लाइना मरचा की लगाए बाद एक लाइन हांगनी हांगनी आप मकीरी लगा जो और वहीं मकीरे गोड़ रे बड़े बड़े का करेला रे बीज डाल दीजो तो वहीं थी कही हुएगा करेला की बोयल ऊपरे चढ़ जाएगा। और वो जो जो का मकीरा पौधा लगाया था वहाँ थी कही हुएगा जो वायरस जो लादे जो आप देखोगा थोड़ा दिन बाद पत्तियाँ मरोड़वा लगे तो वायरस वाला जो सफ़ेद मच्छर है वे ये थी हैं जही भी नहीं सकेगा वो एक बॉर्डर रो काम करेगा। और वटे आप पीला कलर का कट्टा लगे दीजो वहीं पे आप ग्रीस लगे दीजो तो वहीं तो कई वेगा भी वहीं पे चिपक जाएगा। और मिर्चा में आप ये जरूर ध्यान रखिए जो पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने उन्हें लगा जो और यो चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए। अगर किस्म दूसरी बात अब फूल गोभी की भी यानी लगाई सको तो यानी रही बात मुख्य रूप से जो किस्म है वनडे बात पूसा कार्तिकी है पूसा दीपाली है अणा किस्मा ने भी आप इनमें बोई सको। और अंडे वाते 600 से 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की जरूरत पड़े। और बीजों ने हमेशा ध्यान रखो कि जो कि कार्बेनाजिम या बाविस्टिन थी आपने बीजो उपचार कर जो या नहीं हुए तो आपने बीजा अमृत जो लादे है वहीं थी देसी तरीका थी आप अंडो बीजो उपचार जरूर कर जो। कहाँ की कहवे कि नहीं कहवे के अबाण तो कर्ण और बाद में मण तो जन्नाड़ बीज उपचार अगर कर दोगा तो कम से कम 30 से 35 दिन तक आपने फसलारी सुरक्षा भी जाएगा।
1: तो जाते जाते कार्यक्रम में क्योंकि अब बात हाउ तपी रो है और खास तौर वाणी तपानू और गर्मी वंचवाते हैं आप जितना भी किसान भाई है उन्होंने कई सलाह दोगा ताकि वे आपानी फसल ली हाउ पैदावार ले सके और जो आपानी पैदावार है लागी थकी वणा रो उचित वणा ने लाभ मिल सके वे खराब नहीं हुए ताकि
0: जी किसान भाइयों अबाण यो ध्यान रख रो कि ज़्यादा तपी रो है तो वरना पानी रो जो अंतराल है पानी दे आजकल तो वैसे हाइड्रोजेल तकनीक भी आई है वहीं में आप रे पानी की बचत करें लेकिन समय समय पर यानी लू आवाती बचवा रहे वाते आप रे समय समय पर उन्हें पानी देता रहीजो। और वनी फसलों पे आजकल जो जैविक भी आवत तरीका आवा लग गया है वनारो अगर समय समय पर अगर आप छिड़काव करोगा तो उनती आपरे पौधा में सुरक्षा या जन ने कहा इम्यूनिटी है वह वणित रहेगा। वनडे बात है माइक्रो न्यूट्रिएंट है अपने क्लोरीन है मैग्नीशियम है जिंक है अणा का पोषक तत्व वाला जो भी लादे है अणी ने आप अंडे छिड़काव कर सको। और साथ ही आप जीवामृत है बीजा अमृत है घन जीवामृत है अणा रो समय समय पर आप अंडो छिड़काव करता रहिए। और खेत में दोगा तो जत्रो दोगा वन में खेत में पोचो रहेगा और पोचो रोगा रहेगा तो आप खेत में वनडी रोग या अणिती लू तप अणती क्षमता ज़्यादा रहेगा और आपरे पैदावार।
1: तो आप हाँ डॉक्टर दीपक कुमार जी जैन और आज आप कार्यक्रम में जून महीना में व्यवाली फसला में कृषि और पौध संरक्षण कार्य कितर करना है इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी अपने किसान श्रोता लारे साझा की दी और कार्यक्रम में बताया अंडे वाते घणो घणो धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो सा अत्री बढ़िया जानकारी आपने मिली कि वर्तमान समय में आप पोस्ट संरक्षण कार्य किस तरह कर सका और अणु बात की थी आपने 28 गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और दीपक जैन साहब अच्छी जानकारी दी थी साहब।
3: बिल्कुल सा तो अणी जानकारी लारे लारे आप ही अपने कार्यक्रम में बढ़ावा और एक और होना राजस्थानी गीत।
2: बिल्कुल साहब।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पिया आओ तो हुणियो यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत और लार लारे हुणिया आपी संदेश। और आज मेरा भाई है 30 मई, जिन्हें आपी मुख्य रूप हिंदी पत्रकारिता दिवस रूप में मनावा हा और आज आपी सब इन्हें मनाई रहा सा। अंडे इतिहास में जटे बात करा तो 30 मई 1826 ने पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में भारत रो पहलो हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मारतंड जंडो अर्थ वेवे है उगता हुआ सूरज जने पत्रकार शुरुआत की दिए सा।
3: बिल्कुल सही बात है सा। और अंडे अनिदन रे महत्व री बात करा तो अनिदन री शुरुआत देखो भारतीय मीडिया और समाज में ने हिंदी भाषा रे प्रभाव ने एक नई दिशा दी थकी। और अंडे बात है हर साल 30 मई यानी कि आज रो दिन हिंदी पत्रकारिता रे योगदान और पत्रकार रे सम्मान महीने यो दिवस मनायो जावे सा।
2: बिल्कुल सा। और अंडे अलावा वैश्विक स्तर पे भी जटे बात करा तो 30 महीने विश्व MS दिवस मनायो जावे। और अन्य तंत्रिका तंत्र संबंधी जे भी बीमारी वेवे यानी कि आपने त्वचा रे नीचे एक वेवे तंत्रिका तंत्र जण्यू आपी जैसे आपने कोई भी छुई लेवे तो आपने फटाक से खबर पड़ जावे है नी सा। तो वो वेवे तंत्रिका तंत्र तो वंड भी आज या है दन तो यो भी अभी मनाई रहा। और वंडे प्रति भी आपने जागरूकता फैलानी कि अगर आपने कंडे शरीर में कटे भी आपी छुई रहा और उनमें फटाक देन खबर नहीं पड़ रही है तो हम जानो चाहे कि आपने तंत्रिका तंत्र संबंध में कोई ना कोई समस्या है। तो आज आपी ये दो ही दिवस मनाई रहा सा। यह जानकारी देखो आज बहुत ही अच्छी लगी, शायद आपने किसान भाई और बहना भी इन्हें भी अच्छी लगी होगा। और लारे लारे आपी हुनावा एक और राजस्थानी की।
3: बिल्कुल सर।

0: तो देखो सा 600 आपा राजस्थानी लोकगीत हुणायो। और अगर आप बात करें जानकारी री, तो देखो कि अपने कार्यक्रम में आप रोज राज्य सरकार और केंद्र सरकार री कई न कई योजना री जानकारी जरूर दा।
1: बिल्कुल दांसा, क्योंकि ये जो योजना है अपने किसान भाई रे हित रे वाते वे बना रे कल्याण रे वाते, ये जो योजना है वे किसान भाई रे वाते भी वे डांडा चुपा रे वाते भी वे खेती बाड़ी और अपने बाल बच्चा रे वाते भी वे। तो आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि अब बार देखो उन्हाला धन चाली रहा है और जी भी फसल वही रखी है, वनडे वाते सिंचाई री बहुत ही जरूरत पड़े। और नो मुख्य उद्देश्य यो है कि देश रे हर खेत में सिंचाई री सुविधा पहुँचे, पानी री बर्बादी रुके और अणि योजना रे तहत हर खेत ने पानी

0: और जो एक एक बूंद है वह हर फसल तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है सर। और यानी योजना रे अगर आप प्रमुख उद्देश्य री बात करें तो सिंचाई रो विस्तार करना, यानी कि वणा क्षेत्र तक पानी पहुँचाना, जटे खेती पूरी तरह मानसून और बारिश पे निर्भर है। पानी री बचत यानी योजना रो मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक रे जरिए आप देखो पानी री बर्बादी ने कम करना है। अंड अलावा आप देखो भूजल पुनर्भरण यानी कि आप देखो जल संचयन ढांचा ने अन्य तरह निर्माण करने, जमीन रे नीचे रे स्तर पे जो है विने सुधारनो सा।
0: और अन्य लाल लाने फसल उत्पादन में भी वृद्धि करनी, सही समय पे सिंचाई मिलवाऊँ, किसानारी लागत कम वेवे और पैदावार में बढ़त वेवे। योजना ने मुख्य भाग रही, अगर आप ये बात करा तो ड्रिप सिंचाई आप अण में ले सका, अण में पाइप री मदद हो सीधा पौधा री जड़ा तक बूंद बूंद पानी जावे है, जन्यू पानी में खाद और दो भारी मात्रा में आपने बचत वेवे। अन्य अलावा स्प्रिंकल सिंचाई यानी फव्वारा सिंचाई अण में कई वेवे कि फसला में बारिश की तरह पानी रो छिड़काव वे, जो कम पानी में बड़ा हिस्सा पे आपने अच्छी तरीके से बेहतरीन सिंचाई वही जावे सा।
1: बिल्कुल सही बात है साहब। और देखो कहिए कि हर खेत ने पानी अणी योजना रो मुख्य उद्देश्य है। अंडे तहत कहिए कि नया नया जल स्रोत रो निर्माण किदो जाएगा। अंडे अलावा आप देखो पारंपरिक जल निकाय जिसन के पुराना तालाब वे गया, बावड़ी वे गया, कुआ वे गया, वनरी मरम्मत करने जीर्णोद्धार किदो जाई रो है। अणी ने यो भी है कि भाई वर्षा जल संचयन रे बातें कहिए कि मुख्य काम किदा जाई रहा है, यानी कि वंडे
0: बिल्कुल
1: बातें छोटा छोटा डैम बनाया है, छोटा छोटा तालाब बनाया चाहिए ताकि पानी रो संग्रह वही सके सा।
0: बिल्कुल वैसा कैसा। और देखो जटे बात करा मिट्टी में नमी रे बनावारी, तो पानी रे बहाव ने रोकवा रे कारण पहाड़ारी ढलान पर विशेष नमी बनी रहे। और अणु कहिए कि ग्रामीण रोजगार मिले, जैसे मनरेगा री जी जो है वन में अणा में जल संरक्षण रो जितना भी काम वेरा है, जे कटे कटे एनी कट बन रहा है, कटे बांध बन रहा है, तो जितना भी बना रहा है आस पास क्षेत्र रा जी बेरोजगार है वहाँ ने रोजगार मिल रहे हो ऐसा। तो या तो ही योजना री जानकारी और जाता जाता अबे और अपने किसान भाई ने एक और गीत सुनावा सा।
1: बिल्कुल होना उसे।

अभी ग्रामीण परिवार सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर, यही आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज का फिल्म संगीत केंद्रित है समीर अंजान के लिखे गीतों पर।

सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में हम है राही प्यार की फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं रंग फिल्म से। आवाज़ एक बार फिर अलका याग्निक और कुमार सानू की। इस गीत को लिखा है समीर अनजान ने।

श्रोता, अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आशिकी फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं कुली नंबर 1 फिल्म से आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें,
3: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार संध्या और फिर 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
6: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित

0: रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय

0: कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0

शून्य से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के

भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भूपिंदर सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का आकाश

0: आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको पयामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं न कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी।

0: वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका है, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहां निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।

0: बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
1: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
2: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
3: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
2: अच्छा।
3: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
2: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
3: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोज देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था। ये
2: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
1: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
2: कुछ जो अभी यूथ

0: हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बता सकते हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
1: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
2: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखते हैं तो हर एक कॉन्टेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कॉन्टेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
1: लोपर गामिनी।
2: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
1: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
3: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
2: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
1: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अब इस तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
0: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
1: बहुत ही मजेदार होता है।
0: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
3: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूं, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
0: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड,
3: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
1: कॉम्पैक्ट रखो।
3: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
0: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
1: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
3: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ

0: रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया, और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है, जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
0: जी
1: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं, तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
1: जी,
0: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें?
1: जी
0: तो
1: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने या हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते, मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरा

लगानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाश।
1: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
2: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। Her voice has been beautifully nurtured under the guidance of legendary gurus, including Pandit Ajay Pohankar.
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
2: She has graced prestigious music festivals, Khan Samaroh. Leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद से कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
2: Honored with several accolades including the कलाश्री and मोहम्मद रफी awards, her performances are not only technically flawless but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग with a drut composition set to ektal with the lyrics manu nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: श्रोताओं भी आपने सुना संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हम
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।
4: आकाशवाणी हर दिल की वाणी। आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कीजिएगा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।